नमस्कार, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से यह आकाशवाणी जलंधर केंद्र दा एफएम रेनबो चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1947 दे जेठ महीने दी 4 तारीख है। ईस्वी सन 1926 दे मई महीने दी आज 25 तारीख है। इस वेले सवेर दे 5:58 हो रहे हैं। साड़ी अज दी सभा हुण शुरू हुंदी है। एफएम रेनबो अपने सारे स्रोतियां दा निघा स्वागत करता है।

ਹੋਰ ਵੀ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣਗੇ। नौ बज के दो मिनट ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिस विच गल्लां होणगीआं पंजाबी सभ्याचार बारे। ते तुसी अपने विचार सांझे कर सकदे हो ऑडियो ते व्हाट्सएप मैसेजेस राहीं। दिलां नूं सुकून देण वाले हिंदी फिल्मी गीत तुसी इंजॉय करोगे प्रोग्राम गीत बहार विच ठीक 10:02। फरमाइशी प्रोग्राम जिद विच तुसी अपने गीतां दी फरमाइशां पूरी करा सकदे हो। प्रोग्राम रहेगा पंजाबी तड़का ठीक 11:02। दोपहर नूं ठीक 12:02 तुसी सुनोगे डेली लाइफ नाल जुड़िया प्रोग्राम होम स्वीट होम। मिड डे मेलेडीज प्रोग्राम च तुसी इंजॉय करोगे हिंदी फिल्मी गीत ठीक 1:01। शायराना अंदाज विच प्रोग्राम इंजॉय करोगे दिल आज शायर है ठीक 2:00। ठीक 3:00 तुसी सुनोगे FM रेनबो दे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर साडे दिल्ली केंद्र तों। शाम 4:00 तुसी सुनोगे प्रोग्राम हैलो जलंधर। शाम 5:00 तुसी सुनोगे सिविल इन्वेस्टिचर समारोह साडे दिल्ली केंद्र तों। नाल ही प्रोग्राम इंजॉय करोगे युवा दोस्तों का खास प्रोग्राम युवानी ठीक 5:00 तो 6:00 तक। थोड़ी जिंदगी च मिठास लेके आएगा प्रोग्राम लव यू जिंदगी ठीक शाम 6:00। बॉलीवुड ते पॉलीवुड फिल्मां दी गल्लां करांगे प्रोग्राम फिल्मी दुनिया विच ठीक 7:02। ठीक 8:02 प्रोग्राम होएगा मसाला मिक्स। तुहाडियां फरमाइशां पूरियां कीती जाणगी हिंदी जां पंजाबी गीतां दी ओह वी फिल्मी गीतां दी। प्रोग्राम रहेगा दिल चाहता है ठीक 9:02। ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲਗਾਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮੇ ਗਜ਼ਲ ਠੀਕ 10:00 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:03 ਤੱਕ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਕਾ ਨਗਮਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ 10:03 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:00 ਤੱਕ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ FM ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ 11:00 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

कहती है जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। हाँ जी दोस्तों, तुसी सारे एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर, अपनी आज दोस्त राहिल दे नाल। जिंदगी कितनी अजीब है ना, ते बहुत ही सोहनी कहानी भी लगती है, कदे हसाउंदी है कदे रुलांदी है, पर हर बार कुछ ना कुछ नवा जरूर सिखाउंदी है। दोस्तों सानू ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिंदगी च सब तो वड्डी गल ए नहीं है कि तुसी किन्ने सक्सेसफुल हो, उसकी कहानी तो अलग है ही है। जो असी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हाँ तो अपना पूरा हार्डवर्क करते हैं तो लोगों उस कहानी बारे तो पता चलना शुरू हो ही जाता है। लेकिन इस वेले साढ़े लिए यह चीज़ा भी मायने रखदी हैं कि असी लाइफ के सक्सैसफुल होने के नाल नाल किन्ने खुश हैं। बहुत सक्सैसफुल हो गए हैं लेकिन खुशी तो है ही नहीं जिंदगी दे विच, फिर उस सक्सैस का की करना है। आप कदे भी सानू अपने आप नू ना किसी होर दे नाल कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक जर्नी हुंदी है ते रब ने हर किसी लई कुछ ना कुछ खास जरूर सोच के रखिया होया है। जे असी गिरदे हाँ तो सानू दोबारा खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि हर बार सिर्फ ओही नहीं होंदा जदों तुसी कोशिश छड़ दिंदे हो, जदों कोशिश छड़न तो बाद वापस असी खड़े होंदे हैं ना फुल एनर्जी दे नाल, ते सानू पता है कि पिछलियां गलतियां तो असी की सीख के होर की नवा बेहतर करना है। जिंदगी दे छोटे छोटे मूमेंट्स नू इंजॉय करना सीखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जड़ी है ना हसीन तो है ही है, पर कई बार जदों असी नू जीना सीख जाने हैं तो बहुत ही छोटी जी लगती है। एक जिंदगी का जड़ा एक पन्ना है ना जड़ा जन्म दा है, तो एक जड़ा मौत का पन्ना है, वह तो है ही है लिखा गया, वह सानू नहीं पता है ना जब मौत आएगी वह उदों ही आनी है, लेकिन जिंदगी जो बाकी पन्निया तो कहानियां किहोजी चलनी है वो तो असी अपने एफर्ट्स लगा ही सकते हैं। तो फिर अपने जोड़ी कहानी दे पन्ने हैं ना उन्होंने भरना शुरू करो, रोज़ कुछ ना कुछ नवी चीज़ा सीखने की कोशिश करो, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश भी करनी चाहिए। फिर मैं थोड़ी आज दोस्त राहिल, ते दही रहना है, स्टे हैप्पी एंड स्टे

जी दोस्तों, जेड़े साडे दोस्त सानू सुन रहे ने न्यूज़ ऑन AI आ रहे आप राही, उन्होंने भी दस जाइए ते जेड़े साडे नाल नवे जुड़े ने उन्होंने भी दस देने हैं कि न्यूज़ ऑन AI आर ऐप तुसी डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर ते जाके ते साडे नाल जुड़ सकते हो साडे प्रोग्राम दे नाल जेड़ा कि 102.7 FM रेनबो ते तुसी इस वेले सुन रहे हो आकाशवाणी जलंधर दे केंद्र तों।

जी दोस्तों, तुसी सारे सुन रहे हो अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि गुड मॉर्निंग जलंधर। गल्लां दा सिलसिले तो इस तरह ही चलते रहेंगे, लेकिन नाल दे नाल कुछ दिलों जड़ा ना होर वधिया करन वालियां गल्लां भी होनियां चाहीदियां। तो गल्लां तो मैनू याद आया, एक चुटकला ही है, क्योंकि अजकल दे जिहड़े बच्चे है ना, वो कई बार ना कोई क्वेश्चन जो आप पूछ लीए या फिर यहोजे रिप्लाई देंगे ने कि मतलब की कह सकते हैं उन्होंने, बड़ी अटपटे जे रिप्लाई देंगे ने। इस चीज़ से मैं एक गल याद आ रही है, एक मुंडा होंगे चिंटू जिहड़ा ना कार धो रहा होंगे, तो कोलो एक आंटी लंघते ने तो उस तो पुछते ने, चिंटू बेटे कार धो रहे हो? तो फिर चिंटू जिहड़ा ना बड़ी ही पोलाइट वे दे नाल उन्हूं कहिंदा, नहीं आंटी जी कार तो नहीं रहे आया, पानी दे रहे हैं, शायद वड्डी होके बस बन जाए। बच्चे यहोजे रिप्लाई देंगे ने कि बंदा की कह सकता, या तो यह भी तो कह ही सकते सी ना, हाँ जी आंटी कार तो रहा, लेकिन नहीं की रिप्लाई दिता कि नहीं पानी दे रहे हैं ताकि बस बन जाए। हद ही हो गई है, बच्चों तो पूछना ही यहोजे काम हो गए। इस करके अपने बच्चों के नाल जड़ बैठ के उन्होंने समा देना चाहिए, उन्होंने चीज़ा सिखानियां चाहिए। कई बार असी भी जो काम तो वापस आने आपस के कई बार बहने कट्ठे गल् करते हैं, पर कई बार योजे होंगे ना कि असी भी गल करना पसंद नहीं करते, क्योंकि सूँ लगता है कि थके हारे आए हूँ, सूँ समा चाहिए कि साढ़े तो कोई पूछे ना कोई चीज़। असी भी कई बार पुठे जे रिप्लाई देने जिन्हों का कोई सिर ना कोई पैर कुछ योजे सिचुएशन वाले मतलब रिप्लाई दे दें आप भी। तो बच्चे जिहड़े ने कच्ची मिट्टी वांगू हुंदे ने, वो उही सीखते ने जिहड़े वह वेखते ने या सुनने की कोशिश करते हैं। इस करके साढ़े जिहड़े दोस्त ने जिहड़े कि सुनने ने अपने बच्चियां दे लई उन्हां तों थोड़ा जिहा प्यार दे नाल यानी उन्हें समझाउण दे लई उन्हां दे नाल उही गल्लां करनी जिहड़ी तुसीं उन्हां नूं समझाउणा चाहुंदे हो, मतलब एक चीज़ उन्हां नूं दिखानी पएगी कि हाँ जी ये चीज़ इदां हुंदी है, ये चीज़ इस तरह हुंदी है।

0: जी दोस्तों, आज दा दिन होर भी कई चीजों लिए खास है, क्योंकि स्पोर्ट्स जड़े पर्सन ने यानी कि खिडारी ने जड़े कि फुटबॉल नाल बहुत प्यार कर देने होते हैं, लेकिन तो खास दिन है ही है, क्योंकि आज असी मना रहे हैं वर्ल्ड फुटबॉल डे। फुटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक जज्बा है, एक पैशन है, तो दुनिया भर के सारे ही लोगों के दिल की धड़कन भी बनया हुआ है। असी अज के इस खास मौके पर खास दिन से इंटरव्यू राही गल करांगे साडे खास मेहमान दे नाल जिहड़े कि साडे नाल जुड़ चुके ने इस वेले, यानी कि गुरमंगल दास जी, जो ना सिर्फ फुटबॉल तो जुड़े हन बल्कि युवा पीढ़ी नूं एक नवी दिशा दे रहे हन। पंजाब दे पिंड रुड़का कलां तो इन्हां दी जिहड़ा जिंदगी दा सफर जिहड़ा है शुरू हुंदा है, ते इह इस वेले फाउंडर ते सीईओ ने यूथ फुटबॉल क्लब रुड़का कलां दे। ते सर, मैं तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदी हां साडे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच।
1: थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा।
0: जी सर, ते गुरु मंगल दास सर जी, जे असीं गल करिए अज दे खास दिन दी, ते वर्ल्ड फुटबॉल डे, इस दी इंपोर्टेंस की है?
1: राहिल जी, देखो फुटबॉल जेड़ी दुनिया दी सब तो वड्डी खेल है
0: जी,
1: जेड़ा फुटबॉल फाइनल वर्ल्ड कप दा हुंदा ओनू तकरीबन 500 करोड़ लोग देखदे आ, ते 200 तो वध टीमां फुटबॉल वर्ल्ड कप च पार्टिसिपेट करदी आ
0: जी।
1: क्योंकि जेड़े फुटबॉल हैगा एक सोशल इम्पैक्ट भी क्रिएट करता अराउंड द वर्ल्ड, उसनू याद रखने लिए 1924 जो पहला फुटबॉल का कौमांतरी मुकाबला पैरिस ओलंपिक हुई सी, उदो 100 ईयर एनिवर्सरी जिहड़ी आ 2024 दे विच मनाई गई, ते उदो फुटबॉल डे दा इह मनाना शुरू किया गया, क्योंकि फुटबॉल मासेस की खेड है और सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर दी अराउंड द वर्ल्ड, गरीब बच्चों अगे लैके आने बच्चों लाइफ स्किल्स, कॉन्फिडेंस, स्पोर्ट्समैनशिप, तो होर बहुत सारिया चंगिया गल्ला भरन दे विच। इस करके जिहड़ा फुटबॉल वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाता है, जिन्होंने यूनाइटेड नेशनस ने भी मानता दिती हुई है
0: जी,
1: और यूनाइटेड नेशनस वालों भी ये डे मनाया जाता है
0: जी। सर, ते आज दा खास दिन भी मतलब कि जिहड़ा साडा 25 मई दा दिन है, इस करके खास चुनिया गया है। ते जे असीं फुटबॉल दी शुरुआत दी गल करिए ना, ते इत्थे इस दा जिहड़ा इतिहास है उह किन्ना क पुराना है, जे जदों असीं देखिए कि फुटबॉल जिहड़ी सी स्टार्टिंग दे विच होंद दे विच आई सी।
1: पहला कुछ इस दे नाल दी खेड चाइना दे विच 300 BC दे विच स्टार्ट होई सी
0: जी,
1: बट जिहड़ा मॉडर्न डे फुटबॉल हैगा इहनू लंडन नूं इंग्लैंड नूं इहदा जन्मदाता कहा जांदा, 1863 दे विच जो रूल्स बणे जां इह जिहड़ी स्पोर्ट आ
0: जी,
1: इंग्लैंड तों 1863 दे विच शुरू होई सी।
0: ते साडे भारत दे विच कदों तो जिहड़ी आ साडी टीमां ने इहदे विच पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिता सीगा सर?
1: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਆ
0: ਜੀ,
1: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਸ ਬਣਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਹਨ ਬਗਾਨ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਕਲੱਬ।

जी दोस्तों, तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो, यानी कि गुड मॉर्निंग जलंधर। ते मैं तुहाडी आरजे दोस्त रायल। गल हो रही है काफ़ी इंटरेस्टिंग, ते हुण जिदा गल हो ही रही है स्पोर्ट्स बारे, ते उहदे बारे होर भी चर्चा करदे हां।

जी हाँ दोस्तों, इन्हों ने नाम रोशन किया है जिहड़ी 29वीं नैशनल सीनियर एथलैटिक फैडरेशन कप 2026 हो रहा है उहदे विच जिहड़ा कि बिरसा मुंडा स्टेडियम विच रांची झारखंड विच खेडिया गया सीगा। ते इह जिहड़ा मैच सीगा 22 मई तो जिहड़े साडे खेडां हो रहियां सी 22 मई तो 25 मई तक होईआं, ते 4 दिन लगातार खेडां चलीआं, ते होर बहुत सारे जिहड़े इतिहास रचे गए है। ते खास कर जिहड़ी आपां जलंधर वाले ते इहदी चर्चा ते बणदी सी ना, जे गल करिए ना गुरविंदर सिंह दी, जे इस जड़ा इन्होंने रिकॉर्ड तोड़िया है यानी कि 10.09 सैकेंड 100 मीटर की रेस पूरी की है। इस तो पहला जड़ा रिकॉर्ड सीगा 10.15 सैकेंड का, जो कि अनिमेश कुजूर ने बनाया सीगा, उन्होंने पिछे छड़ दिता गया है। तो होर भी वधिया रहा, तो एक होर जड़े मैं दस दिनी हाँ साढ़े होर जो स्पोर्ट्समैन परसन है उन्होंने भी गल कर लेंगे, जिन्होंने कॉमनवैल्थ गेम्स के क्वालीफाई कर लिता है, यानी कि इस दे विच काफ़ी वधिया जड़ा है प्रदर्शन सानू वेखन नू मिलिया है। तो जड़ी आप 400 मीटर रेस वाली गल कर लेनी, उस दे विच भी हिस्ट्री ही क्रिएट हुई है एक तरह की, क्योंकि इस दे विच विशाल टीके ने कमाल कर दिता है। उन्होंने जिहड़े पहले इंडियन बने ने जिन्होंने 45 सैकेंड बैरियर तोड़ के 44.98 यानी कि 44.98 सैकेंड च रेस कंप्लीट की है, तो गोल्ड मैडल जीत लिया है।

जी दोस्तों, तो सानी ट्यूनिंग है 102.7 FM, बिल्कुल FM रेनबो दे नाल नाल 103.6 MHz वी प्रोग्राम चल रहे। गुड मॉर्निंग जलंधर, ते मैं तो हाड़ी आर जे दोस्त समझ गए। हाँ हाँ राहिल, देखो AI दे नाल काफ़ी सारिया जड़ियां चिंतावां तो देखने को ही मिलती हैं, लेकिन जिहड़े सानू रिलीफ मिले उन्हां दी गल भी तो करनी बनती है ना। लो जी, फिर एक होर खास जिहड़ी खबर है AI दे नाल रिलेटेड है कि जिहड़े TB दे मरीज ने उन्हां दी AI जिहड़ी है रिपोर्ट दे नाल ही उन्हां दे 5 मिंटां दे विच ही एक्सरे रिपोर्ट मिल रही है। बहुत ही वधिया है, क्योंकि पहला जिहड़ा है ना जिहड़ी रिपोर्ट मिलन दे विच कितना समा लगदा सी, 2 to 2.5 घंटे जिहड़े लग ही जांदे सीगे। हुण जिहड़े सिविल हस्पताल दे विच रोज़ाना दे TB दे मरीज जिहड़े आ रहे ने, OPD दे विच 150 तो अधिक मरीज जिहड़े ने एक्सरे जिन्हां दा कीता जांदा है, हुण जिहड़ी रिपोर्ट देरी दे मिलन दे कारण जिहड़े लोकां नूं एक दिन बाद फिर वापस आना पैंदा सी, हुण जिहड़ी ई जिहड़ी है चिंता जिहड़ी उह नहीं होई उसे टाइम 5 मिनटां दे विच जिहड़ी है रिपोर्ट मिल जांदी है। हुण TB दे मरीजां दे लई इह बहुत एक वधिया जिहड़ी है गल हो रही है। होर जे असीं गल करिए, बहरहाल सेहत विभाग की जिहड़ी है 57 दिन की जिहड़ी है ग्रामीण इलाकिआं दे विच फैक्टरी हो गई इंडस्ट्रियल एरिया दे विच सर्वे चल रहा है, तो इस सर्वे दे विच इन्हां ने जिहड़ी है पोर्टेबल जिहड़ी मशीनस है या फिर चैसट एक्सरे स्क्रीनिंग जिहड़ी है वह की जा रही है। इस दे विच इह वी देखण नूं मिले कि 400 तो अधिक जिहड़े नवे TB दे मरीज सानूं मिले ने। जिहड़ी पुरानी जे असीं गल करिए AI तों पहलां दी गल करिए, उस समें दे विच काफ़ी सानूं टाइम लगता सीगा जिहड़े मरीज जिहड़ी है पूरा चेकअप करन दे विच ते जानन दे विच कि उसनू TB है कि नहीं है, लेकिन AI ने इस चीज़ नू चेंज कर दिया, 5 मिनटां दे विच ही सानू एक्सरे रिपोर्ट मिल जाती है। ये बहुत एक वधिया गल है। ते जिला TB अधिकारी डॉक्टर परमवीर जी का कहना है कि AI ने इस काम नू होर साढ़े नाल वधिया बना दिता है, ते हुण लोकां दे विच वेखण नू काफ़ी आसानी हो जा रही कि उन्हां नू TB दी शिकायत है या नहीं है, कि जिहड़ी फस्ट स्टेज ते ही आपां इस नू पहलां ही काबू कर सकते हैं। ते अज दा जिहड़ा है मंडे वाला दिन काफ़ी ज़्यादा वर्किंग रहिंदा है, ते होर तुहानू परेशान नहीं करांगी, लेकिन बने रहना तुसी मेरे नाल ही। वैसे 8:26 हो गए, ते नाल ही एक आखिरी गीत लगांदे तुहाडे नाल गुड मॉर्निंग जलंधर नूं इत्थे इजाज़त देनी, होर बाकी किते नहीं जाना, मैं वापस आना है, क्योंकि गल्लां बहुत सारियां करनियां ने हले भी तुहाडे नाल, क्योंकि ब्यूटीफुल जिहा दिन है, तैनूं होर ते वधिया बनाना बनदा ही है।

0: कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 तो वध वोटां दे फरक नाल जीत लई है। श्री पांडा ने अपने नजदीकी विरोधी CPIM दे उम्मीदवार शंभूनाथ कुर्मी नूं हराया जिन्हां नूं 40,645 वोटां मिलियां। फालता विच 21 मई नूं सारे 285 वोट केंद्रां ते केंद्री बलां दीआं करीब 35 कंपनियां दी सुरक्षा हेठ दुबारा वोटिंग होई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा नूं रिकॉर्ड फर्क नाल फालता विधानसभा चोण जित्तण ते वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जित पश्चिम बंगाल दे लोकां दे भाजपा प्रति अटुट विश्वास नूं दर्शाउंदी है। अज पेट्रोल दीआं कीमतां विच 2.61 रुपए अते डीजल दीआं कीमतां विच 2.71 रुपए दा वाधा कीता गया है। पिछले 2 हफ्तिआं विच पेट्रोल अते डीजल दीआं कीमतां विच इह चौथा वाधा है। हुण दिल्ली विच पेट्रोल 102.12 रुपए फी लीटर अते डीजल 95.20 रुपए फी लीटर उपलब्ध होएगा। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तरीक होण वालियां कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट 2026 प्रीख्यावां मुलतवी कर दिता है। NTA ने कहा है कि यह फैसला सरकारी नोटिफिकेशन मुताबिक ईद उल जुहा या बकरीद की छुट्टी की तरीक विच बदलाव के मद्देनज़र लिया गया है। एजेंसी ने दसिया कि प्रभावित उम्मीदवारों लिए सोधियां प्रीख्यावां तरीकों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सैकेंडरी सिक्ख्या बारे केंद्रीय बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात दीआं बोर्ड परीक्षावां लई उत्तर पुस्तिकावां दीआं स्कैन कीतीआं कॉपियां प्राप्त करन दी आखरी तरीक अज तक लई इक होर दिन लई वधा दित्ती है। CBSE ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों नूं बेनतियां जमा कराउण लई ढुकवां समां देण लई लिया गया है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIR RNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ते अमरीका दहशतगर्दी के सारे रूपां ते प्रगटाव्यां नाल लड़न विच बेहद दिलचस्पी रखते ने। कल नवी दिल्ली विच अमरीका के 250वें आजादी दिवस समारोह विच इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ते अमरीका नूं दहशतगर्दी नूं बिल्कुल भी बर्दाश्त करन बारे हमेशा स्पष्ट होना चाहिए अते इसे लई उन्हां दा दहशतगर्दी विरोधी सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: उन्हें कहा कि दोवां देशां दा विश्व आर्थिकता नूं खतरे तो बचाउण ते दुनिया नूं होर विकल्प प्रदान करन विच सांझा हित है। अमरीकी विदेश मंत्री अते NSA मार्को रूबियो दी यात्रा दा जिक्र करदे होए डॉ जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा समकाली समय विच भारत अमरीका संबंधां दी महत्ता नूं उजागर करती है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कल नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे अमरीका के 250वें आजादी दिवस के जश्न नूं मनाउण लई कराए गए एक समागम विच अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर नूं फोन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं अपना करीबी दोस्त दसते हुए श्री ट्रंप ने कहा कि दोवां देशों विचकार संबंध पहलां नालों किते ज्यादा मजबूत होए ने। उन्होंने अपने आप नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वड्डा प्रशंसक दसिया ते कहा कि वह भारत नूं प्यार करदे ने अते भारत उन्हां ते 100% भरोसा कर सकता है। श्री सर्जियो गौर ने श्री ट्रंप की गलबात नूं उत्थे मौजूद लोगों नूं सुनाउण लई अपना फोन माइक्रोफोन दे कोल रख दिता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ते अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी समागम विच मौजूद सन। पश्चिमी एशिया तणा दरमियान 5 दिन की सालाना हज यात्रा अज तो शुरू हो रही है। भारत समेत दुनिया भर के मुस्लिम भाईचारे के 1,60,000 तो वध लोग मक्का तो हज यात्रा शुरू करेंगे अते साउदी अरब के मीना विच इकट्ठे होंगे। मीना विच रात बिताने तो बाद जायरीन बल्कि सवेरे अराफात के मैदान विच जाएंगे। इस साल भारत तो करीब 1,75,000 श्रद्धालु हज विच हिस्सा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते दिल्ली दे कई हिस्सों लई लू दा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ साहिली आंध्र प्रदेश झारखंड उड़ीसा ते तेलंगाना विच भी तेज गर्मी पैण दी संभावना।

नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप 2026 आज नॉर्वे दे ओस्लो विखे शुरू हो रही है। ये टूर्नामेंट भारतीय समय मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होएगा। इस वकारी टूर्नामेंट के ओपन औरतों के दोवे वर्गों में हिस्सा लेने वाले खिडारियों मैगसन कार्लसन डी कुकेश और आर प्रगनानंद वर्गे विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर शामिल ने। IPL क्रिकेट विच बीती रात कोलकाता के ईडन गार्डनस विच दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स नू 40 दौड़ां नाल हरा दिता। आखिर विच बुलेटिन दियां खास खास खबरां एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज राष्ट्रपति भवन विखे पदम अवार्ड प्रदान करनगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सारे कबायली भाईचारियां नू एक सार सिविल जाबते दे दायरे तो बाहर रखे है। पेट्रोल की कीमत च 2.60 रुपए और डीजल की कीमत च 2.71 रुपए फी लीटर का वाधा होया है। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET अंडर ग्रेजुएट प्रीख्या 2026 मुलतवी कर दी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमरीका दहशतगर्दी के हर तरह के रूपों नाल लड़न लई तैयार ने। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 बजे होएगा। नमस्कार।

0: हाँ जी दोस्तों, म्यूजिकली योर्स समय हो गया 8:40 ते प्रोग्राम शुरू करने का समय हो ही गया। अड्डी टप्पा लो जी, फिर बैक टू बैक पंजाबी बीट गीत तुहाडे लई, ते फिर भी और तुहाडी मॉर्निंग नू होर एंटरटेन बना देगा, एंटरटेनिंग एनर्जेटिक भी बनाएगा ये प्रोग्राम।
1: This right. Hey, yeah, people picking up with a brand new vibe, a new collection of sound. Yeah, this ain't no hip hop. It's pure original, they say. That's right.

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

जी दोस्तों, जी आया नू, जी आया नू, जी आया नू, प्रोग्राम शुरू हो गया। दिल अपना पंजाबी, दिल तो दिल बैक पंजाबी। मैं तो थोड़ी आरजे दोस्त राहिल जुड़ी हुई है तुहाडे नाल। दिलो जी हुल वेला हो गया तुहाडी शिरकत दा, यानी कि जे तुसी अपनी कोई विचार जानकारी साडे नाल सांझी करना चाहते हो, तुसी सानू मैसेज कर सकते हो 9855 10 10 27 ते, या होर कोई नानी दादी दियां खाणा या फिर होर कोई जानकारी साडे नाल सांझी करना चाहते हो, तुसी सानू मैसेज कर सकते हो। ते इस दे नाल ही होर जिहड़ियां तुसीं अज गल्लां दसोगे, यानी कि अज है वर्ल्ड फुटबॉल डे, तो फुटबॉल दे नाल किहदियां किहदियां जिहड़ियां यादां जुड़ियां होईयां ने, ओह तुसीं सानूं दस सकदे हो। कदे तां खेडे ही होणे आ, इदां दी गल नहीं है।

अर्ज करा मैं हाथ जोड़ा, हो बाबे फरीद जिड्डा मेरा सब्र है नहीं, ना लोक लाज मीरा बाई जैसी। हो ते बुल्ले शाह जिड्डी मेरी कब्र है नहीं, तू कृपा कर ते बख्शिश कर दाता, मैं कोजा कर्मों हीन बंदा, हो तेरी पगती रहमत सोजी दे, बंद करा।

0: जी
1: ते मैं दसना चाहुंना कि गराया तो 3-4 किलोमीटर की दूरी ते एक रुड़का खुर रुड़का कला पिंड है।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: उस पिंड में फुटबॉल नू बड़ा प्रमोट किया जाता है, ते मतलब छोटे छोटे बच्चों नू उत्थे तैयार किया जाता है फुटबॉल वास्ते। ते उत्थे दी अकेडमी पिछले दिनी मैक्सीको चे अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल होया सी, उहदे विच हिस्सा लैण गए। इन्हां नू स्पैशल उत्थे बुलाया गया
0: जी
1: ते उत्थे ये रनर अप रहे आ, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी इन्हां ने, कई देशों नू हराया, लेकिन फाइनल चे हार गए। लेकिन इत्थे बच्चों नू बड़ा अच्छे तरीके दे नाल तैयार किया जाता है, क्योंकि फुटबॉल की जिहड़ी गेम है ना वो पंजाब विच बहुत घट है, इस नू
0: जी
1: प्रमोट नहीं किया जाता, ते ज्यादातर क्रिकेट दे दुआले ही गेम साडी घूमती है पूरे देश च ही। ते फुटबॉल जिहड़ा साडा काफी पिछे आ, वर्ल्ड लेवल ते पहुंच नहीं सके आ, ते इस करके साडियां जिहड़ियां छोटियां छोटियां संस्थावां उन्हां नू चाहिदा है कि वो फुटबॉल दे जिहड़े प्लेयर आ वो नैशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल दे तैयार करन, तां कि फुटबॉल दे विच साडा भी कोई ना होवे।
0: जी
1: ते इस वास्ते जिहड़ी ये रुड़का खुर्द दी जिहड़ी हैगी आ वो
0: जी
1: बहुत कोशिश कर रही है,
0: रूटा कलां
1: अकेडमी जिहड़ी है बड़ी मशहूर अकेडमी है इस इलाके दी, ते ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल ते प्लेयर तैयार करते हैं, ते बच्चों नू बड़िया सहूलता देंदे हैं। ते इस करके सानू भी चाहिदा कि जो फुटबॉल है इस नाल अपने बच्चों नू जोड़िए, ते इस जिहड़ी गेम आ अलोप हुंदी मेरे हिसाब नाल तो लगती है उस नू प्रमोट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फुटबॉल साडी एक मेन गेम हुंदी सी पहले, ते क्रिकेट दे आउण करके ये थोड़ा जिहा पिछे चली गई है, तो इस नू हुण अज दे समें विच होर भी ज्यादा प्रमोट करन दी जरूरत आ, तां कि जिहड़ा फुटबॉल आ साडा पंजाब दा जां साडा इंडिया दा वा वो होर भी अगे वध सके।
0: जी, जिदा कि इन्होंने दस्या है कि रुड़का कला दे विच जिहड़ी है काफ़ी बच्चियां नूं तैयार किया जाता है नैशनल इंटरनेशनल लैवल दे खेड करान। ते असी ते यही चाहते हैं कि जिथे जलंधर पंजाब है ते उस तो अगे इंडिया, फिर उस तो अगे भी मतलब वर्ल्ड लैवल ते भी कई इहो जिहियां खेडां ने जिदा विच असी अपना मुकाम हाले हासिल नहीं किया लेकिन बनाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ते बस उहदे विच भी फुटबॉल एक नंबर ते रहेगी। ते अगर तो अगे होर सानूं लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही साडे नाल होंदियां रहिणगियां। लो जी, फिर अगला मैसेज सुनते हैं कौन ने।
2: वेल अपना पंजाबी प्रोग्राम पेश कर रही धी राणी राहल नूं इकबाल सिंह मेन बाजार हठूर तहसील जगराऊं जिला लुधियाणा दी बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी सत श्री अकाल बेटा
0: सत श्री
2: जी।
0: अकाल
2: 25 मई अंतरराष्ट्री फुटबॉल दिवस की तुसी गल कीती है,
0: जी
2: फुटबॉल है मैदान दी शान
0: जी
2: खिडारियां दी बने पहचान, दौड़ के लगन जोश दे नाल चमकावे ए देश दी शान,
0: जी
2: गेंद उत्ते असमान जिवें सपने होण परवान, 25 मई आया है सन्मान विश्व फुटबॉल दिवस महान, आओ खेडां दे नाल जुड़िए तंदरुस्त जीवन बिताइए, आओ खेडां दे नाल जुड़िए तंदरुस्त जीवन बनाइए। इस करके खेडां खेडणियां बहुत जरूरी आ, जिथे साडे शरीर का विकास करदियां खेडां उथे साडे मन का विकास भी करदियां। एक बार तो फिर 25 मई अंतरराष्ट्री फुटबॉल दिवस दियां समूह 102.7 दे स्रोतियां नूं ते खिडारियां नूं बहुत बहुत बधाइयां। एक बार तो फिर बेटा राहल जी नूं इकबाल सिंह मेन बाजार हठूर तहसील जगराऊं जिला लुधियाणा दी बहुत ही प्यार भरी सत श्री अकाल बेटा जी।
0: जिदा कि इकबाल जी ने किया है कि जिहड़ा खेडां है ना वो साडे शरीरिक तौर ते लई तां जरूरी है ही है कि मानसिक साडे शरीर लई भी बहुत जरूरी है ते खेडां खेडणियां जरूरी ने। बिल्कुल, थोड़ा टाइम करके आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मूवमेंट ही इंजॉय हो जाते हैं। मान लो कि जिदा आप सारे फैमिली वाले ने या होर पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है जिन्हें बिल्कुल पूरा भरिया पूरा परिवार होंगे है ना, टाइम स्पेंड करने के सानू पता नहीं लगता करना की है, फिर कोई ना कोई खेड खेड सकते हैं मैदान के जाके, टाइम स्पेंड हो सकता है बहुत वधिया वाला। अगला देखते हैं कि मैसेज है तो की कहना चाहते हैं साढ़े दोस्त।

एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे पद्म अवार्ड प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सारे कबायली भाईचारे नू इकसार सिविल जाब्ते दे दायरे तो बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत च 2.61 रुपए अते डीजल की कीमत च 2.71 रुपए प्रति लीटर का वाधा होया। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 28 मई नू होण वाली CUET अंडर ग्रेजुएट प्रीख्या 2026 मुलतवी कर दिती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका दहशतगर्दी के हर तरह के रूपों नाल लड़न लई तैयार ने। पंजाब सरकार वालों साल 2025-26 विच पानी बचाने वाली तकनीक अपनाने वाले किसानों 35,38,00,000 रुपए जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों दुनिया भर में सूबे का नाम रोशन करने वाले 87 नामी खिडारियों महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार नाल नवाजा गया। पंजाब सरकार वालों आंदे झोने की रुत तो पहला किसानों लिए बिजली संबंधी सारे प्रबंध मुकम्मल। पंजाब चोन कमीशन ने सूबे 26 मई को होने वाली नगर कौंसल और नगर पंचायत चोणों लिए वोटर फोटो शिनाख्ती कार्ड तो इलावा 15 होर बदलवे दस्तावेजा पछाण के सबूत वजो मानता दिती। फिरोजपुर काउंटर इंटेलीजेंस ने सरहद पारों नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करदिया 4 मुलजमान 28 किलो तो वध हेरोइन 9.5 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार किया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों लिए पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों में लू चलन की पेशिनगोई की है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स 40 दौड़ा नाल हराया। एसन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस ते हुन पेश है प्रोग्राम गीत बहार बस कुछ पलां च।

आगे आनी हो ही प्रोग्राम गीत बहार प्रोग्राम लाके मैं इंद्रप्रीत से रहा हाजिर आज ही तो हाडे अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते। ते तुसी भी बिल्कुल तैयार ब तैयार हो क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुके है तुहाडे नाल किन्नी सारियां गल्लां भी करनियां हैगियां। ते 10 बजे दा जिहड़ा प्रोग्राम हैगा गीत बहार ओ ते शुरू हो चुके है। 11 बजे पंजाबी तड़का लावांगे फोन इन प्रोग्राम च, दैन उस तो बाद असी होम स्वीट होम इंजॉय करांगे 12 बजे जिहदे विच किन्नियां सारियां गल्लां करांगे। कुछ नुस्खे दसूंगी तुहानूं, कुछ रैसिपी दसूंगी, कुछ टिप्स दसूंगी कि अपने घर नूं किद्दां सोहणा बनाउणा, अपनी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट तुसीं किद्दां कर सकदे हो। एंड उस तो बाद रिलैक्स होके 1 बजे असीं सुणांगे मिड डे मेलोडीज प्रोग्राम जिहदे विच ओल्ड इज गोल्ड ब्यूटीफुल ट्रैक्स तुसीं सुनोगे ते खूब खूब खूब इंजॉय करोगे। फिलहाल वापस आने हैं गीत बहार ते। गीत बहार प्रोग्राम बिल्कुल शुरू हो चुके है। प्रोग्राम की शुरुआत में एक सोहना जिहा गीत प्ले करदे हां ते गल्लां करूंगी जी करूंगी।

वेलकम बैक। प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार, तुहाडे अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो ते, ते मैं तुहाडी दोस्त इंद्रप्रीत सरा। टाइम उरे 10:22, ते इह जिहड़ा समां है ना, कह रहे हैं कि एक सोहना जिहा गीत हो जाए, फिर उस तो बाद गल्लां ते मैं आपे कर लैनियां हैगे, तुसीं सिर्फ गीत इंजॉय करो।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

वेलकम बैक। गीत बहार प्रोग्राम चल रहा है थोड़े अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते ते मैं इंद्रप्रीत सिरा तुहाडे लई सोहणे सोहणे गीत प्ले कर रही हां ते किन्नियां सारियां गल्लां कर रही हां जो तुहानूं अच्छियां लग रही ने जे नहीं भी लग रही तो कोई गल नहीं थोड़ी देर बाद अपने आप अच्छियां लगनगियां क्योंकि कहिंदे ने ना सियाणियां दा क्या बाद चो पता लगदा है टाइप ऑफ इहदे कहिंदे आ ना आंवले दा खादा सियाणियां दा है ना इहदे हुंदा ना उच्च तुहानूं याद है बुझारत के नहीं सॉरी माफ़ी चाहनी हाँ बुझारत नहीं कहिंदे उहनूं मुहावरा कहिंदे ने वैसे इदां दे मुहावरे पहलां तां इन्ने हुंदे सीगे ना हुण उहनां नूं असीं अपनी डेली लाइफ विच यूज़ भी करदे हुंदे सी खास करके अपने मैं भैन भरावां दे उत्ते है ना।

वाओ, इन्ना कु सोहना गीत, इन्ना अच्छा लिरिक्स, इन्ना अच्छा म्यूजिक, खो ही गई सी मैं। बड़ा दिल नु सुकून मिलन वाला म्यूजिक सीगा, सीगा कि नहीं? आई नो सीगा। वेल, ये जिहड़ा गीत तुसीं सुनिया, ये फिल्म का नाम सी सुहाग, ते एस पी बाला सुब्रमण्यम ते चित्रा ने इस गीत नु आवाज़ दिती। कुछ गीत मज़ा ही दवा देंगे ने, इन्ना सोहना रिलैक्स फील हो रहा सीगा। मेरा दिल कर रहा सी गीत चली जावे। कई बार जो दिल करे ना कि थोड़ा जा रिलैक्स करना है, तो उदो थोड़ी देर बैठ के 5 मिनट की अपने आप नाल बैठ के ब्रेक ले लेनी चाहिए है, क्योंकि पूरे दिन के असं इन्ने क ज़्यादा बिजी होंने, कि मैं सही गल दसा, खाण का भी फुरसत नहीं मिलती हैगी। कई बार इन्ना बिजी काम च हुंदा इंसान, और उस रोटी के लिए असं कमाने तो उन्होंने ही खाने का टाइम जड़ा ना मिलता नहीं। सो अपना एक रूल जरूर बनाना चाहिए हैगा कि खाण पीन नू हमेशा टाइम पर ही खाना चाहिए। अपना जो खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टाइम पर करो। बाकी सारे काम चलते रहते हैं, होंगे रहते हैं, बट जी सेहत एक बार खराब हो गई ना, वो फिर दोबारा जल्दी ठीक नहीं होंगी। सो इसलिए अपने आप लिए टाइम कढ़ो, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, स्ट्रैसड फील कर रहे हो, रिलैक्स करो, बैठो, अपने आप नाल गल करो। कई जिहड़े सोल्यूशनस ने ना, अपने आप नाल कल्ले बैठ के गल करके भी निबड़ जाते हैं। बस थोड़ा समा देना शुरू करो, अपना मी टाइम शुरू करो। सारा कुछ, सारा टाइम असं एक दूजे दें, अपनी फैमिली, हसबेंड, बच्चों, या हसबेंड अपनी वाइफ, बच्चों, फैमिली, अपने लिए भी टाइम कढ़ो। जो तुम अपने लिए टाइम कढ़ोगे ना, तो फील करोगे कि तुम होर भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो, फोकसड हो, ते तो होर कमां दे विच, सारे कमां दे विच दिल किन्ना लगता है। एक बार जरूर कोशिश करके देखियो। फिलहाल मैं प्ले करन लगी हूँ एक बहुत ही मज़ेदार जिहा गीत, जिहड़ा सुन के तुहानू मज़ा आएगा, सुनोगे हासा भी आएगा। सो इंजॉय कर दे इस गीत नू, ते उस तो बाद गल्लां ते करूँगी। कई बार कुछ सच्चियां गल्लां करदियां जिहड़ियां कि चंगियां नहीं लगदियां, बट की करिए जी, वह भी करनियां जरूरी होंदियां ने।

एफएम न्यूज हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे पद्म अवार्ड प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सारे कबायली भाईचारे इकसार सिविल जबते के दायरे तो बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपए और डीजल की कीमत 2.71 रुपए प्रति लीटर का वाधा होया। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET अंडर ग्रेजुएट प्रीख्या 2026 मुलतवी कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका दहशतगर्दी के हर तरह के रूपों नाल लड़न लई तैयार ने। पंजाब सरकार वालों साल 2025-26 विच पानी बचाने वाली तकनीक अपनाउन वाले किसानों 35 करोड़ 38 लाख रुपए जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों दुनिया भर में सूबे का नाम रोशन करने वाले 87 नामी खिडारियों महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार नवाजे गया। पंजाब सरकार वालों आने झोने की रुत तो पहला किसानों बिजली संबंधी सारे प्रबंध मुकम्मल। पंजाब चोन कमीशन ने सूबे 26 मई को होने वाली नगर कौंसल और नगर पंचायत चोणों लई वोटर फोटो शिनाख्ती कार्ड तो इलावा 15 होर बदलवे दस्तावेजा पछाण के सबूत वजो मानता दी। फिरोजपुर काउंटर इंटेलीजेंस ने सरहद पारों नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करदिआं 4 मुलजमान 28 किलो तो वध हेरोइन 9.5 लाख की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों लिए पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली के कुछ हिस्सों में लू चलन की पेशेनगोई की है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स 40 दौड़ों नाल हराया। ईसन FM न्यूज हेडलाइंस ते हुन पेश है प्रोग्राम पंजाबी तड़का।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम पंजाबी तड़का चल रहा है ते अगले दोस्त साढ़े कोल पहुंच गए ने, गल करदे आ। हेलो,
1: हां जी मैडम जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
1: मैं जी चरणजीत सिंह चन्ना, आनंद नगर नियर मकसूदा जलंधर तो बोल रहा जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: शुक्रिया जी, ताडा भी बहुत बहुत जी।
0: अच्छा जी, ये दसो मेनू, जिदा तुहाडा नाम चरणजीत हैगा ते तुहानू निक्के हुंदिया तो चन्ना ही बुलांदे सीगे कि कोई होर भी निकनेम रख्या सीगा घरदिया ने?
1: नहीं जी, चन्ना करके ही बुलांदे सी सारे जी।
0: अच्छा, ते जिन्ने घर दे फैमिली मेंबर सारे दे निक्के नाम रखे होने आ?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: चलो ठीक है, तुहाडा तां मैनूं पता लग गया हैगा, हुण अगले जिहड़े दोस्त आउगे उन्हां तों वी पुछांगे उन्हां दा निक्का नाम की सी छोटे हुंदे।
1: ठीक है जी।
0: जी ते गीत किहड़ा सुनोगे?
1: गीत हरजीत हारमन दा कोई भी वधिया जिहा गाणा ला दे।
0: जरूर जी, तुहाडे लई प्ले करांगे गीत। गल करन लई बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: शुक्रिया जी।
0: जी दोस्तों, इन्हां दी फरमाइश ते आ रहा बहुत ही प्यारा जिहा गीत हरजीत हरमन की आवाज़ दे विच। सो जे तुसी भी अपनी फरमाइश का गीत सुनना चाहते हो, की करना पेगा? नंबर मिलाना पेगा 0181 2342 174। फिलहाल एक छोटी जी ब्रेक तो बाद इन्हां दा जिहड़ा गीत है, फरमाइशी गीत, जरूर प्ले करूँगी।

0: निदेशक क्षेत्रीय समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां पे जंदी आखरी तरीक हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे, ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का, तुहाड़े अपने चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते, ते मैं तुहाड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सिरा। ब्रेक ते जाण तो पहला जिहड़े दोस्त दा फोन आया सी चरणजीत सिंह चन्ना दा, उन्हां दी फरमाइश दा गीत मैं प्ले करन लगी हाँ। जे तुसीं भी अपनी फरमाइश दा गीत सुनना है तो 0181 243 174 नंबर मिला के पहुँच जाओ प्रोग्राम पंजाबी तड़का।

0: जी दोस्तों, 11:27 हो गए ने, अगले दोस्त साढ़े को पहुंच गए ने, गल कर दें। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
1: मैडम जी, सन्नी भगत बोल रहे हैं जी, फार कैंप जलंधर तो।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम। शुक्रिया जी। तो ये दसो कि बचपन दे विच तुहाडा नाम की रखिया सीगा? निक्का नाम?
1: निक्का नाम मैडम जी रखे रिंकू जी।
0: रिंकू, वैसे तुहाडा जिहड़ा ओरिजिनल नेम ओह वी निक्का, कईआं दा निकनेम हुंदा है सनी।
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: ठीक है जी। सो तुहानू रिंकू कह के बुलाइए कि सनी कह के बुलाइए?
1: नहीं मैडम जी, फिलहाल सनी कह के बुला कर रहे बुलाओ।
0: ठीक है जी, ओके सनी जी।
1: काफी दिनों बाद मैडम जी, 4-5 दिनों बाद प्रोग्राम सुन सके, तुसीं आए ते अज मैं कॉल लगाने दी कोशिश कीती, लग गई।
0: बहुत बहुत वधिया लगा कि तुसीं फोन कीता। ते अज गीत केड़ा सुनोगे?
1: गीत मैडम जी एमी ब्रिक दा सुना दिओ गानी।
0: जरूर जी, तुहाडे लई प्ले करांगे इह गीत। गल करन लई बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: शुक्रिया मैडम जी।
0: जी दोस्तों, इन्हां दी फरमाइश ते तां गीत प्ले होण लगा है, ते जे हले भी तुसीं सोच रहे हो कि केड़ा गीत प्ले करवाना है, ते सोची ना जाओ, फटाफट सोच के नंबर मिलाओ 0181-42174-01812342174।

0: जी दोस्तों, प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो पंजाबी तड़का, ते पंजाबी विरसा तुसी गीत सुने आ, ते अगले जिहड़े दोस्त ने साडे कोल पहुंच के ने गल करिए। हैलो,
1: हैलो मैडम,
0: सत श्री अकाल जी। कौन दोस्त गल कर रहे ने?
1: हरविंदर,
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम च।
1: थैंक यू मैडम, बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत चिर बाद मुंडा जी।
0: जी काफी टाइम बाद तुहाडे नाल गल हो रही है ते, अच्छा मैनू ये दसो, निके हुंदे तुहाडा जिहड़ा कच्चा नाम है ओह की रखिया सी घरदिआं ने?
1: मेरा नाम सी
0: जी, तुहाडी आवाज कट रही है।
1: मेरा नाम बी ए आई
0: बी ए
1: बी ए सी आई
0: सी आई बक्की
1: बब्बी बब्बी
0: बब्बी ओके बी ए बी आई बब्बी, बड़ा प्यारा सा नाम है वैसे, हैगा कुड़िया वाला नाम रखिया सीगा।
1: ओ इदा सी ते मासी है ना कंटी लैंड विच।
0: हां जी,
1: फिर उसका का हो ना बब्बी बहादुर जी।
0: अच्छा जी,
1: सही ना हो गजनी भी मेरा नाम सुता।
0: बहुत ही प्यारा नाम बब्बी। ठीक है जी, आज गीत केड़ा सुनोगे बब्बी?

टी अंडर ग्रेजुएट प्रीख्या 2026 मुलतवी कर दिती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका दहशतगर्दी के हर तरह के रूपों नाल लड़न लई तैयार ने। पंजाब सरकार वालों साल 2025-26 विच पानी बचाने वाली तकनीक अपनाने वाले किसानों नूं 35 करोड़ 38 लाख रुपए जारी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान वालों दुनिया भर विच सूबे का नाम रोशन करने वाले 87 नामी खिडारियों नूं महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार नाल नवाजिया गया। पंजाब सरकार वालों आउंदे झोने की रुत तो पहला किसानों लई बिजली संबंधी सारे प्रबंध मुकम्मल। पंजाब चोन कमीशन ने सूबे च 26 मई नूं होण वालियां नगर कौंसल अते नगर पंचायत चोणां लई वोटर फोटो शनाख्ती कार्ड तो इलावा 15 होर बदलवें दस्तावेज़ां नूं पछाण दे सबूत वजो मानता दित्ती। फिरोजपुर काउंटर इंटेलीजेंस ने सरहद पारों नशा तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करदिआं 4 मुलजमां नूं 28 किलो तो वध हैरोइन अते 9.5 लाख दी ड्रग मनी समेत गिरफ्तार कीता है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनां लई पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते दिल्ली दे कुछ हिस्सों विच लू चलन की पेशनगोई की है। IPL क्रिकेट विच दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स नूं 40 दौड़ां नाल हराया। SNFM न्यूज हेडलाइंस ते हुण पेशे प्रोग्राम होम स्वीट होम। बस एक छोटी जिही ब्रेक तो बाद

FM News Headlines. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन विखे पद्म अवार्ड प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सारे कबायली भाईचारे नू एक सार सिविल जाबते दे दायरे तो बाहर रखा है। पेट्रोल की कीमत च 2.61 रुपए है ते डीजल की कीमत च 2.71 रुपए प्रति लीटर का वाधा होया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई नू होने वाली CUE

हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल जी। प्रोग्राम होम स्वीट होम लैके मैं इंद्रप्रीत सर हाजिर हाँ जी तुहाडे अपने चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते। होम स्वीट होम मतलब अपने घर नू किन्ना क प्यारा तुसी बना सकते हो, है ना। सो अज जिहड़ा प्रोग्राम है शुरुआत करते हैं थोड़ी जी ग्रीनरी दे नाल, मतलब कि थोड़ा जहा पेड़ पौद्यां वल थोड़ा ध्यान दिता जाए। सोहणे लगते हैं ना जो घर के गमले लगाने वे सोहने सोहने फुल होंगे ने, या फिर वो तो कोई निक्का मोटा फ्रूट होंगे है, अच्छा लगता है। बट उन्हों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे है। तो जे असी बाहरों कोई इदा की खाद लेके आने जिद थोड़ा जहा कैमिकल होंगे वो नुकसान पौद्या भी होंगे। सो अज के इस प्रोग्राम के कुछ घर दिया ही चीज़ों तो खाद किदा रेडी की जा सकती हैगी है, कि चीज़ की रिक्वायरमेंट होंगी हैगी है। कह सकते हैं कि प्राकृतिक उपाय जड़े मतलब नैचुरल चीज़ा जो है असी तो घर जो प्लांट्स ने उन्होंने होर भी खूबसूरत किदा बना सकते हैं, आज मैं तुहानू ये दसूँगी। प्रोग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है पर एक गीत तो बिना तो अधूरा अधूरा लगता है, तो एक गीत प्ले करनी है उस तो बाद दसती हाँ जी तुसी की कहना जी। बिल्कुल सही गल है, अपनी डायरी ते पेन लेके बैठ जाओ क्योंकि गल्लां बहुत नहीं, कोई मिस होगी तो औखा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी बैठ जाओ नोटबुक लेके ते एक पेन लेके ताकि मैं सारी जिन्नी गल्लां दसां तुसी उन्हूं नोट कर लो।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देस पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम चल रहे होम स्वीट होम, तो हरे आपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते मैं थोड़ी तो सिंदरप्रीत सिरा असी गल कर रहे सी मसालिया दी। सो मैं कह सकती हूँ तुहानू एक बोनस टिप भी दे दनी है, तुहानू दस दनी है कि होर की कर सकते हैं। वैल जो मसाले तुसीं रखने है एयरटाइट कंटेनर दे विच होने चाहिए है, तो जो भी यूज़ करने हैं तो डब्बा खुला नहीं छड़ना है, यूज़ करके उस टाइम बंद कर देने है, तो गिला चमचा वो बिल्कुल भी नहीं पाना, क्योंकि इदा दिया जो असं गलतियां करते हैं तो मसाले जड़े ने ना वो जल्दी खराब हो जाते हैं। सो कई लोग तो लसन दियाँ कलियां भी रखते हैं सुकिया हुई, ये मसाले दे जिहड़ा भी तुहाडा मसाला उहदे विच पा के रखण दे नाल हुंदा की हैगा है कि इहदे नाल नमी नहीं आती हैगी, नमी नूं घटांदा है, कीड़े जिहड़े है ना वह नहीं वधदे हैगे इहदे नाल, ते नाल ही नाल जिहड़े तुहाडे मसाले हैगे वह ठंडी जगह पर रखने चाहिए है, सुक्की जगह पर रखने चाहिए है। तो जे तुहाडे कोल सुक्कियां लाल मिर्चा है तो वह भी तुसीं डब्बे दे विच दो या तीन सुक्कियां लाल मिर्चा जिहड़ियां पा दोगे ना, कीड़ियां नूं उहदी खुशबू अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि हुंदी ही नहीं तिखी खुशबू हैगी है। सो ये कुछ तरीके दे नाल तुसीं जिहड़ा है अपने मसालिया नूं सेव करके रख सकते हो बिना किसी कीड़े मकौड़े दे होर लंबे समय तक। सो ये निक्के निक्के नुस्खे होंगे, इन्होंने समझना जिहड़ा है ना बहुत जरूरी हैगा है। मैं तो तुहानू समझा दिता हैगा, जे तुहानू पहला तो पता सी तो बहुत अच्छी गल है, जे नहीं पता सी तो मैं तुहानू दस दिता है। तो यह भी दस दिनी कि अगला गीत जिहड़ा प्ले करन लगी रोशन प्रिंस ते पैनी गरेवाल की आवाज़

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नथी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

एयर टाइट कंटेनर दे विच बंद करके तुसी रख लेना ते 3 to 4 महीने तुहाडे काम आएगा। होर तुसी इंस्टेंट अचार बना सकते हो। हुण इंस्टेंट अचार बनाने लई मसाला तो दस दिता, पर जो बनाना है अचार उस टाइम की चाहिए है, उहदे लई करो इंतजार, क्योंकि एक सोहना जिहा गीत उस तो बाद तुहानू दसूंगी कि फटाफट अचार किद्दां बना सकते हो। मसाला रेडी हो चुका है, एक्चुअल उहनू किद्दां यूज करना मसाले नू, ओह मैं तुहानू दसूंगी इस गीत तो बाद।

बट दूर हो जाते हैं। एक नियम है कि जेड़ा आया उन्हें जाना है। तो अज गल करांगे सुनील दत्त की, उन्होंने अज डेथ एनिवर्सरी है। हमेशा हमेशा असं उन्होंने जिन्हें भी साढ़े एक्टर एक्ट्रेसिस जड़े ने उन्होंने याद करते हैं, उन्होंने गाने सुनते हैं, दिल में सुकून जरूर मिलता हैगा। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इन्हों ही एक फिल्म का गीत, वक्त फिल्म का गीत है, जिसनों आवाज़ दिती है महेंद्र कपूर ते आशा भोसले ने।

हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज दे विच। मैं तुहाड़ी दोस्त इंद्रप्रीत सेरा स्वागत करते हैं सारे श्रोतियों का जो सुन रहे ने 102.7 मेगाहर्ट्स एफएम रेनबो ते नाल ही नाल 103.6 मेगाहर्ट्स ते आकाशवाणी अमृतसर ते। सो प्रोग्राम दी शुरुआत जल्दी ही करन लगी हैगी एक सुन जे गीत दे नाल, पर उहदे नाल नाल दस दवां कि अज एक खास दिन है। खास दिन है जदों असीं बॉलीवुड की गल करते हैं उहदे विच बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसिस की गल करते हैगे आ, ते कुछ साढ़े बहुत ही पसंदीदार होंदे ने, सानू बहुत अच्छे लगते हैं, दिल के करीब होंदे ने उन्हां दे गीत, उन्हां दी फिल्मां।

ये आँखें देखती बहुत कुछ हैं, ये आँखें देखती बहुत कुछ हैं, पर किसी के दीदार को तरसती बहुत हैं। महफिल में तो कुछ कहती नहीं, महफिल में तो कुछ कहती नहीं, पर अकेले में बरसती बहुत हैं।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

जी किस तरह का लगा गाना? मैंने पता सी कि तुहानू गीत बहुत अच्छा लग्या होएगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। आवाज इस गीत नू दित्ती किशोर कुमार ने, ते फिल्म दा नाम सी पड़ोसन। प्रोग्राम इस तरह ही चलता रहेगा, तुसी सुनदे रहोगे सुने सुने गीत। तेरी मुस्कान से दिल धड़क जाए, तेरी यादों से रूह महका जाए, तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा, तुझ बिन हर पल लगता है अधूरा सा, तू साथ हो तो जैसे जहां सज जाए।

103.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी अमृतसर से। तुमसे मिलकर जाना मोहब्बत क्या होती है, तुमसे मिलकर जाना मोहब्बत क्या होती है, कैसे दिलों में चाहत की शमा जलती है। हर लम्हा तेरे संग बिताना चाहता हूँ, हर लम्हा तेरे संग बिताना चाहता हूँ, अब तो बस यही इबादत दिल करता है।

प्यार परी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। एफ बैंड 102.7 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्स, आकाशवाणी अमृतसर न्यूज़ ऑन AIR दे जरिए एफ एम रेनबो चैनल ना जुड़े हुए तमाम दोस्तों नू बिपन सुमन वालों प्यार भरी ते निघी जी आया। रेडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 2:03 हो चुके ने ते प्रोग्राम दिल आज शायर है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तुहाडे एहसासां दा प्रोग्राम, तुहाडे जज्बातां दा प्रोग्राम, तुहाडे हर सुख दुख दा साथी, तुहाडा अपना प्रोग्राम दिल आज शायर है जिस दे विच तुसीं शिरकत करदे हो जी, हाजरी लगवाउंदे हो, खुद आण पहुँचदे हो लफ्ज़ां दे जरिए। नंबर हुंदा है 98-55-10-10-27 9855101027, वो नंबर जिस दे उपर तुसी सानू व्हाट्सएप दे जरिए अपने दिल दे हालात शब्दां च पिरो के भेज दिओ इक शायरी दे जरिए। वो शायराना हालात जदों साढ़े तक पहुँचते हैं फिर असी अपनी आवाज़ दे जरिए उस दे विच थोड़ा जिहा होर माहौल नू ऐड करन दी कोशिश करदे आ मिलदे जुलदे गज़ल गीत प्ले करके। सो अज फिर उही सिलसिला बरकरार रहेगा जी तुहाडे ते साढ़े दरम्यान। सो इंतजार करते हैं जी कि कहड़े दोस्त अज सब तो पहला हाजरी लगवा रहे ने इस प्रोग्राम के, उन्नी देर तक सुनते हैं अमर संधु की आवाज़ च गाए हुए इस गीत नूं।

0: FM 102.7 MHz, 103.6 MHz और न्यूज ऑन AIR दे जरिए दोस्त सुन रहे ने प्रोग्राम दिल आज शायर है। इस प्रोग्राम च तुसी अपने दिल दे जज्बात अपने आरजे नाल सांझे कर रहे हो जी। नंबर 9855101027 9855101027 इस नंबर दे उपर तुसी अपनी शायरी साडे तक पहुंचदी कर रहे हो। जेकर तुसी खुद नहीं लिखदे तां तुसी किसे शायर दी शायरी जो तुहानू पसंद है उस शायर दे नाम दे नाल वी लिख के सानू पहुंचा सकदे हो जी। फिलहाल अगली साडे कोल शायरी आण पहुंची है जी। साडे दोस्त ने प्रेम मार्केट बठिंडा तों अमरजीत जसल जी बहुत बहुत शुक्रिया जी लिख रहे हैं कि खुश रहा करो उन्हां दे लई जो तुहानू खुश नहीं देखना चाहते। समझण दे विच शायद मैनू गलत लगा जी, पर नहीं, जो इन्होंने लिखा वो बहुत ही डूंगा लिखा है और उपरों उपरों शायद सानू समझ नहीं आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी अमरजीत जी अपनी शायरी साढ़े नाल सांझी करन दे लई। और अगली शायरी साढ़े तक आन पहुंची है जी बलविंदर सराह पिंड मोड़जुंड सिखा हनुमानगढ़ तो। लिख रहे ने कि आरजू होनी चाहिए किसी को याद करने की, लम्हे अपने आप मिल जाते हैं, कौन पूछता है बंद पंछियों के पिंजरे में, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं, और यादों की कीमत उनसे पूछो जो अपनी खातिर अपना सब कुछ लुटा जाते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तुहानू हुण तक दा चल रहा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। और दोस्तों अगे गुजारिश हुई है जी कि जल्द तो जल्द जिहड़े दोस्तों ने हुणे हुणे ट्यून इन किया है वह अपनी शायरी साढ़े तक पहुँचाउणी शुरू कर दें ताकि समय सिर उन्हां दे मैसेज भी पढ़ के प्ले कर दिते जाण, क्योंकि साडे जिहड़े दोस्त ने जदों काफ़ी सारे दोस्त हुंदे ने और उन्हां चों कुछ दोस्त खास तौर पर नाराज़ भी हो जाते हैं अपनी शायरी जिहड़ी है उह लिख के डिलीट कर देंदे ने। सो गुजारिश है जी कि इंज ना करिया करो, जिन्ना दुख तुहानू हुंदा उस तों ज़्यादा दुख जिहड़ा है ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। सो दोस्तों एक जरूरी सूचना, उस तो बाद गीत लैके हाजिर हाँ। नंबर एक बार फिर दस दें जेकर तुसी शायरी भेजना चाहते हो, नंबर है जी 9855101027 9855101027।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा, रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਮਈ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਫਾਰਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ newsonair.com ਜਾਂ newsonair.gov

0: एक जमाने विच हुकम सिंह नू उसदे घर वाले कुड़कुड़ दास बुलांदे सन क्योंकि लाइट पखे चलदे देखदे ही ओ सारेयां ते चिकन लगदे सन।
1: ओ रामू ए पखा क्यों चलदा छड़ता, बिजली दा बिल की तेरा बापू भरेगा।
0: पर अज सारे उन्हां नू प्यारा सिंह कहंदे ने क्योंकि जदों तों उन्होंने सोलर पैनल लगाया है उदों तों मीटर दी सुई भी शांति नाल सौंदी है। अते हुकम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अज ही रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in ते।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सर तुसी पर्सनल लोन लेना?
4: फिर तो यार इनू तो ब्लॉक ही कर देना।
3: सर दुबई दी फ्री ट्रिप।
4: इनू भी ब्लॉक। किन्नेयां नू ब्लॉक करी जावां यार। सिर्फ फोन ते ब्लॉक करना स्पैम खत्म नहीं हुंदा, हर बार नवा नंबर आ जांदा है। तां फिर की करां? कॉल पिक कर, फिर ट्राई डीएनडी ऐप ते रिपोर्ट कर, कैटेगरी सिलेक्ट करो, बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस ते सबमिट करो। बस कुछ सेकंड्स दा काम है।
5: मतलब सब दा स्पैम कट जावेगा?
4: हां, रिपोर्ट मिलदे ही एक्शन हुंदा है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करो। ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर तों ते रिपोर्ट करना शुरू करो।

0: बैठ के यूं साहिल पर कभी तूफान में कश्ती को चलाकर देखो, और हार भी रौन के गुलशन ही है फूलों की तरह, कंडे भी जरूरी हैं, कांटे भी जरूरी हैं
1: जी,
0: हार भी रौन के गुलशन ही है फूलों की तरह, अपनी तकदीर के कांटों को सजा कर देखो,
1: सजा कर देखो, बहुत खूब है, बहुत खूब जी।
0: हार भी रौन के गुलशन ही है फूलों की तरह, अपनी तकदीर के कांटों को सजा कर देखो, और पेश आएगा मोहब्बत से हर एक गम तुमको, पेश आएगा मोहब्बत से हर एक गम तुमको, गम को कौशर की तरह दिल से लगा कर देखो।
1: क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत खूब। मैम एक गुस्ताखी मैं करन लग गया, मैं तुहाडी इस रचना तों इन्ना प्रभावित होया, और एक दो लाइनां मैं भी लिखिया ने, अगर इजाजत होवे ते मैं।
0: अरे अरे
1: जी जी, कि समा गवाना भी अच्छा लगने लगेगा आपको, समा गवाना भी अच्छा लगने लगेगा आपको, आप कौसर जी की गजलों में उसे गवा कर देखो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
0: अरे वाह
1: जी जी जी,
0: तो तुम उन्हीं बना लिया।
1: जी बस मैं कोशिश करता हूँ ना जी, क्योंकि एक तवज्जो, और दूसरा जेड़ा है कि जो सानू किसी चीज ने दिलों कुछ कीता ना, तो फिर मेरे अंदरों कुछ ना कुछ शायरी उत्पन्न हो जाती है जी, बस फिर वो कुछ मौके ते थोड़ा जा बना लीदा। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम कौसर जी, तुसी अपने कीमती समय चो साडे नाल पल सांझे कीते, और गजलां दे नाल सानू ते साडे श्रोतियां नू एंटरटेन कीता, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: हाँ जी, शुक्रिया,
1: तुहाडा
0: भी बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। थैंक यू जी। सो दोस्तों, ये सन साढ़े नाल जुड़े हुए साढ़े अज दे पोइटिस पूनम कौसर जी, जो कि बहुत ही आला दर्जे की शायरी है जो लिखते हैं, उर्दू अदब दे विच गज़ल ते नज़म लिखते आ रहे हैं। ऑफिशियली गल करते हैं 2004 तो, लेकिन पैदाइश तो ही कुछ शायर होंगे ने जिहड़े जन्म तो ही शायर होंगे ने। सो उन्हां दे विचों एक साढ़े अज दे खास जो साढ़े नाल फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए सी पूनम कौसर जी। सो प्रोग्राम दोस्तों चल रहा जी दिलाज शायर है, इस प्रोग्राम दे विच साढ़े दोस्तों ने जो साढ़े तक भेजिया हुई अपनिया शायरी ने वो साढ़े तक पहुँच चुकी है जी, वह भी असी तरतीब बार पढ़ते जावांगे, पर फिलहाल दे लई एक ट्रैक आ रहा जी सतिंदर सरताज की आवाज़।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर ते न्यूज़ ऑन AIR दे ज़रिए दोस्त इस वेले जुड़े हुए ने FM रेनबो चैनल दे नाल ते सुन रहे ने प्रोग्राम दिल आज शायर है। तरस गया हूँ थोड़ी सी वफा के लिए, तरस गया हूँ थोड़ी सी वफा के लिए, किसी से प्यार ना करेंगे खुदा के लिए, जब भी लगाते हैं इश्क की अदालत

जब भी लगाते हैं इश्क की अदालत, हम ही चुने जाते हैं सजा के लिए। तरस गया हूँ थोड़ी सी वफा के लिए। ए शायरी साढ़े तक इस प्रोग्राम च पहुँच दी कीती जी मोहम्मद मुजफ्फर, मोहम्मद अरमान, पेंट खुरद, जिला मलेरकोटला। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी शायरी भेजन लई। अगली शायरी है जी, लिखा कि आई एम सुमन फ्रॉम विलेज पुल्लर बेट, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। के सबर पहला भी किया, सबर हुण भी जारी है। सबर पहला भी किया, सबर हुण भी जारी है। कदी तां रब कहूगा आजा, हुण तेरी वारी है।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं अनुराधा। श्रोताओं आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट, यानी वो चिकित्सा सेवा जो अचानक हुई दुर्घटनाओं, गंभीर चोटों, फ्रैक्चर आदि के समय दी जाती है। इस विषय से जुड़ा आपका भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आपके सवालों के समाधान के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। साथ ही डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार
1: सर। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मेडिकल इमरजेंसीज क्या हैं?
2: देखिए, किसी भी स्थिति कोई इंसान अगर सोचता है कि अगर मेडिकल सुविधा ना ली जाए
1: जी,
2: तो उसके या तो जान को खतरा हो या उसके लिम्ब या किसी अंग का खतरा हो या किसी ऑर्गन का खतरा हो, और अमूमन ये स्थितियाँ ऐसी होती है कि अगर टाइमली मेडिकल केयर ना मिले तो उसको बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे आप समझ लीजिए हार्ट अटैक की बीमारी हो गई, कोई छत से गिर गया या एक्सीडेंट चोट वाली बीमारी या चोट हो गया, किसी को किसी ने सांप ने काट लिया, किसी को सांस की बीमारी हो गई
1: जी,
2: किसी को लकवा मार गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपात स्थिति है और इसमें जल्द से जल्द मेडिकल सुविधा लेना अत्यंत आवश्यक है।
1: जी, सुविधाएं लेना आवश्यक है, ये आपसे ज़रूर जानेंगे। और बहुत सारी चर्चा अभी तो शुरुआत है और हमारे श्रोता उत्सुक होंगे जानने के लिए कि आज क्या क्या हमारे लिए बहुत कुछ आप दोनों विशेषज्ञों से जानने को

इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भावता।

0: श्रोताओ, आज रेडियो डॉक्टर में हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर। यदि आपका भी कोई सवाल है तो हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: मैम नमस्कार जी।
0: नमस्कार सर, अपना नाम बताएं
1: जी। एक्सपर्ट को भी दोनों को जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जी,
1: मैं यामिन भाई रेडियो वाला तिरोड़ी लोनी जिला का
0: जी सर।
1: पर आप ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग तड़पते रहते हैं, पड़े रहते हैं, और लोग सहायता करने में थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं कि जिससे कि कानूनी कार्रवाई होती है तो डरते हैं कि उनका नाम लिखा जाएगा, उनको कार्रवाई में साथ रखा जाएगा। ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक है, मेरा थोड़ा समझाएं।
0: प्राथमिक चिकित्सा आप जानना चाह रहे हैं कि प्राथमिक चिकित्सा क्या दी जाए और कोई डर की बात तो नहीं है जो लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल, ये जानना चाहते हैं आप ना जी।

0: जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि लोग क्यों असमर्थ अपने आप को फील करते हैं और क्यों डरते हैं कि लीगल कार्रवाई या कुछ पुलिस केस या कुछ इससे घबराते हैं। तो अगर मैं जानकारी आपको दूं कि सरकार ने इस पे बहुत सारे कदम उठाए हैं और एक इस तरीके का एक नियम लॉ या कहें कि एक गाइडलाइंस सब तरफ से आई है जिसको हम लोग कहते हैं गुड समेरिटन लॉ। इसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो मददगार हो सड़क दुर्घटनाओं में स्पेशली, जो मदद करे उस पर किसी तरीके का कोई भी कानूनी कार्रवाई या उसको तकलीफ़ ना दिया जाए। और इसमें सरकार ने इनाम का भी एक सिस्टम रखा हुआ है और इसको हर अस्पताल अब अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे लोगों को ना उनसे हम नाम पूछते हैं ना उनका हम डिटेल लेते हैं। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कदम है ताकि जो चोटग्रस्त मरीज़ हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, उनको मदद समय से मिल पाए। तो ये इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है।
1: तो इनको आपने जानकारी दे दी, आगे बढ़ते हैं। और अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मेडिकल इमरजेंसीज़ क्या हैं, तो डॉक्टर अरुण सर आपके पास आना चाहेंगे कि सिर्फ इलाज मेडिसिन के तौर पर ही हो सकता है या कैसे इसकी रोकथाम की जाए, बचाव कैसे किया जाए?
2: जी, मेडिकल इमरजेंसी के दो पहलू हैं। हम एक वाक्य बहुत समय से सुनते आए हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
1: बिल्कुल।
2: यानी किसी भी चीज़ से बचाव अगर हम करते हैं तो उससे होने वाली सारी तकलीफ़ों से बचा जा सकता है। अभी जो मेडिकल इमरजेंसी की बात हो रही है उसमें जैसे मान लीजिए अभी दुर्घटना की, अभी हमारे कॉलर भाई साहब ने पूछा कि दुर्घटना में हम क्या करेंगे। तो दुर्घटना में सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि दुर्घटना से हम बचें कैसे। अगर हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की, सड़क के किनारे होने वाली दुर्घटना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सावधानी कम होने से दुर्घटना घटती है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई मोटरसाइकिल चालक और हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं या कोई रेड लाइट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं या एक पेडेस्ट्रियन जो पैदल यात्री हैं वो अपना फुटपाथ छोड़ के सड़क पे आ जाते हैं, तो ये सारी परिस्थितियां होती हैं जो दुर्घटना की संभावना को बढ़ाती हैं। तो पहले ये जागरूकता हो और हम इन नियमों का पालन करें कि हम दोपहिया वाहन पे हेलमेट चला के ही बैठेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे तो हम सीट बेल्ट बांध के रखेंगे और अगर हम सवारी यात्री भी हैं तो भी हम सीट बेल्ट लगाएंगे, और अगर हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो हम सिग्नल का, उस पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। ये एक उदाहरण हुआ। दूसरी तरफ एक दुर्भाग्य की बात होती है कि लोग अल्कोहल पीकर फिर गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं जो दुर्घटना का आमंत्रण है। तो कहने का मतलब कि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सकता है, पूरी सावधानियां अगर हम बरतें तो दुर्घटना होने से रोक सकते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा मेडिकल इमरजेंसी की बीमारियों में। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा पड़ गया, या किसी व्यक्ति को अचानक या स्ट्रोक हो गया और उसकी बॉडी पैरालिसिस हो गई, ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं पहले से उपस्थित किसी बीमारी की वजह से। यानी किसी को उच्च रक्तचाप की अगर बीमारी है तो उसको स्ट्रोक हो सकता है, किसी को अगर हार्ट की बीमारी पहले से है तो हार्ट अटैक हो सकते हैं। ऐसे में उस मरीज के साथ साथ उनकी देखभाल करने वालों का ये दायित्व बनता है कि वो ऐसी स्थिति में ना आए, इसके लिए डॉक्टर ने जो सलाह दी है उनकी दवाई को लेके कि आप निश्चित समय पे नियम से जो दवाइयाँ बताई गई है वो खाएं, जो आपकी जीवन शैली में परिवर्तन कहा गया आपके खान पान के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में, उनका अगर आप नियम से पालन करेंगे तो आप उस दुर्घटना से होने से बहुत हद तक बच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो मेरा तो सभी श्रोताओं से कहना ये रहेगा कि आप दुर्घटना होने मत दीजिए, दुर्घटना से बचिए। जहाँ भी कोई दुर्घटना की संभावना दिखती है, दुर्घटना होने की जो संभावित कारण है उनको दूर कीजिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। चाहे हमारी शारीरिक स्थिति हो या फिर हम कहीं दुर्घटना बाहर शिकार होते हैं, दोनों ही डिपेंड करता है कि हम कितने सतर्क हैं। डॉक्टर साहब ने ये आपको आगाह कर दिया है, फिर भी कोई भी स्थिति आपके साथ आती है तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि ट्रॉमा की चर्चा क्यों ज़्यादा होती है इतनी?
0: देखिए, ट्रॉमा भी एक इमरजेंसी है। हम अमूमन कहते हैं कि किसी चीज़ से चोट लगी, कोई गिर गया, रोड ट्रैफिक इंजरी हो गई, आपस में झगड़ा हो गया
1: जी।
0: ये सारे कारण हैं ट्रॉमा के। चूँकि ये रोड ट्रैफिक इंजरी सबसे कॉमन है ट्रॉमा के कारकों में, और ये 18 से 45 साल का एज ग्रुप जो है उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, और लगभग हर साल हम करीब 1,70,000 से ऊपर लोगों को खोते हैं जो यंग हैं
1: जी।
0: जो हमारे उनके घर के और साथ में देश के कहिए कि ब्रेड अर्नर हैं, कंट्री के लिए काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए इसकी चर्चा

0: है क्योंकि ये हमारी यंग पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर रहा है, और ट्रॉमा एक ऐसी स्थिति है जो सर ने अभी बड़ा अच्छा बताया, इसको हम रोक सकते हैं,
1: जी
0: ये पहले से कोई बीमारी नहीं है, हम इसको बचाव कर सकते हैं। इसलिए हम ये टोटल जो डेथ हैं 2.25 लाख के आसपास, इसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं अगर बचाव पे जाए तो।
1: चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे पास जिज्ञासाएं भी बहुत सारी आ रही हैं आज के विषय से जुड़ी हुई। आप हैं मिस्टर रवि जोशी, लिख रहे हैं कि आई नीड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रॉमा मैनेजमेंट। व्हाट आर फाउंडेशनल गाइडलाइंस एंड रिसोर्सेज इन ट्रॉमा मैनेजमेंट?
0: सो रवि जी, धन्यवाद, आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा है। पहले तो ये जान लें कि एक ऐसे ट्रॉमा की स्थिति या चोट वाली स्थिति हो तो करना क्या चाहिए। तो जैसे अगर मैं एक रोड ट्रैफिक इंजरी की एग्जांपल को लूँ, तो सबसे पहले देखना है जो बचाव करने जा रहा हो वो देखे कि क्या मैं सेफ़ हूँ इस जगह पहुँचने के लिए।
1: जी
0: तो अपनी सेफ्टी पहले देखे, ऐसा ना हो कि एक की जगह दो हो जाए। दूसरा कि अब वो जो घायल व्यक्ति है उसको एक सेफ जगह पर ले जाएँ। सेफ जगह पे ले जाने के बाद अब दो काम करनी है हमें, एक तो एम्बुलेंस या मदद के लिए कॉल, और दूसरा कि किसी को फ्रैक्चर हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग से बहुत ज़्यादा मौतें होती है, तो ब्लीडिंग हो रही है तो क्या वो दबाव दा दे के हम रोकें उसको,
1: जी
0: और कोई फ्रैक्चर है तो क्या हम थोड़ा स्प्लिंट कर सकते हैं। जैसे ही मदद आए तो बाकी एम्बुलेंस और बाकी लोग जब आ जाएंगे तो उसकी मदद होगी। तो ये थोड़ा देखना चाहिए। रिसोर्सेस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे और बहुत सारे रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, जिसको आप देख के कॉमन पब्लिक एक ट्रॉमा में क्या कर सकती है, इसके लिए सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन में अवेलेबल हैं, आप ज़रूर उसको उपयोग करें।
1: जी डॉक्टर साहब, कैसे जाना जाए कि इमरजेंसी की स्थिति है, क्योंकि वो नाजुक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि घर में ही क्योरेबल हो। कैसे जाना जाए कि इमरजेंसी वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है?
0: एक तो ये है कि कोई व्यक्ति जो पहले से ठीक था, अपना काम सारा कर रहा था या बातचीत कर रहा था, उसमें कोई उसको तकलीफ नहीं थी, अब वो कह रहा है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है और ये तकलीफ़ प्रोलॉन्ग हो रही, लंबी चल रही है। लंबी कहने का मतलब कि आपको लग रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट उससे भी ऊपर जा रहा हो, या लगे कि जैसे बेहोश हो गया कोई, या अचानक से धड़कन बहुत तेज़ हो गई, या और कोई स्थिति है जैसे किसी को चाकू से कट गया या कुछ हो गया, तो ये सारे आपात
1: जी
0: स्थितियाँ हैं। बर्न
1: जी
0: हो गया,
1: बर्न जी
0: स्नेक बाइट हो गई, किसी ने पॉइजन खा लिया, ये सारे आपात स्थितियां हैं जिसमें हमें हेल्थ की सुविधा या मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
1: जी तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा नंबर हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे जो कि जिस पर तुरंत हेल्प मिल सके हमारे श्रोताओं को?
0: अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एक आपात स्थिति के लिए नंबर दी गई है 112, सो 112 पे आप कॉल करके मेडिकल हेल्प या किसी भी तरीके की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी तो उसी से एम्बुलेंस को कॉल कर दिया जाएगा।
1: जी
0: अगर आपको लगता है और आपको जानकारी है कि आपके यहाँ ये एम्बुलेंस का नंबर है, जैसे दिल्ली में 102, बाकी जगहों पे 108, ये कॉमन नंबर्स हैं जिस पे लोग फ़ोन करके एम्बुलेंस सुविधाएं लेते हैं,
1: जी
0: तो उससे आप मदद ले सकते हैं।
1: जी तो उम्मीद है श्रोताओं कि आपने ये नंबर्स नोट डाउन ज़रूर कर लिए होंगे, क्योंकि आज जो विषय है हमारा बहुत ही हटके है और हम लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ताकि आपको अगर कोई भी जो है इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो आप कैसे उससे बचाव कर सकते हैं और किस तरह से आपकी जो दिक्कतें हैं वो आप उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। यदि आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत हमें कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 011-234-21080 और 011-234-21082। अब वापस आना चाहेंगे आपके पास डॉक्टर साहब, के जो ये सारी स्थितियां हम डिस्कस कर रहे हैं तो बचाव की स्थिति तक पहुंचने के लिए अगर हमें जो पहला ट्रीटमेंट देना होता है घर पे, वो किस तरह से शुरुआत की जाए?
2: जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं या प्राथमिक चिकित्सा है,
1: जी
2: ये निर्भर करती है कि दुर्घटना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप घर की बात करें कि घर में कोई बुजुर्ग इंसान अगर बाथरूम में गिर गए
1: जी,
2: तो सबसे ज़्यादा रिस्क इस बात की होती कि कहीं उनकी कूल्हे की हड्डी ना टूट गई हो। ऐसे में वहाँ से सबसे पहले उनको निकाल के सुरक्षित स्थान पे लाके और एक फ्लैट सरफेस पे, यानी एक नरम गद्दे की जगह एक हार्ड सरफेस पे उनको लिटाया जाए
1: जी,
2: और फिर ये समझा जाए कि उनको कहाँ दर्द हो रहा है। फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी होती कि क्या वहाँ से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, किसी पार्ट से चोट लग के वहाँ से कोई खून तो नहीं निकल रहा। अगर वो बेहोश हो गए तो वो बता नहीं पाएंगे, तो वो हमें देखना ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर तेज प्रकाश ने अभी बताया कि हमें एम्बुलेंस के लिए या मेडिकल सुविधा उपलब्ध करने के लिए सबसे पहले कॉल कर देना चाहिए कि जब तक एम्बुलेंस आएगी या जब तक मेडिकल सर्विसेज आएंगी तब तक हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें वाइटल देखना चाहिए कि उनकी नब्ज चल रही है कि नहीं, उनकी सांस

0: रही है कि नहीं और वो होश में है कि नहीं। अगर ये तीनों सुरक्षित हैं, यानी उनकी नब्ज भी मिल रही है, उनको सांस भी आ रही है और वो शायद बेहोश नहीं है, तो हम ज़्यादा सुरक्षित स्थिति में हैं। अगर मान लीजिए वो बेहोश हो चुके हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखने की चीज़ है कि उनको कुछ खिलाने या पिलाने का प्रयास हम ना करें
1: जी।
0: और उनकी सांस हम देख सकते हैं कि उनकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, नाक के पास उंगली ले जाके हम पता कर सकते हैं कि हवा आ रही है नहीं आ रही है। अगर उनकी गर्दन टेढ़ी है तो हम उसको ज़रा सीधी करने का प्रयास करें ताकि सांस की नली खुले और उनको सांस आती रहे
1: जी।
0: और ये हुआ एक एग्जाम्पल। दूसरा मान लीजिए कि कोई दुर्घटना हो गई जिसमें बर्न हो गया, बर्न हो गया, बच्चा है वो खेल रहा था, किचन में पहुंच गया, उसकी हाथ में आग लग गई। अब वो आग लगने से वो झुलस सा गया है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम ये होता है कि हम उसको नॉर्मल वाटर, जो टैप में पानी आता है, जो नल में पानी आता है, उसके नीचे हाथ रख दें, लेकिन रगड़ें ना। क्यों ना रगड़ें? क्योंकि रगड़ने से उसकी जो जली हुई स्किन है वो उतर जाएगी, वो बहुत हानिकारक होगा। सिर्फ ठंडे पानी में, नॉर्मल ठंडे पानी में, बर्फ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको साफ़ कर दें और उसके बाद हाथ को खुला रखें। अब उसमें स्थिति है कि अगर हमारे पास घर में कोई ऐसी क्रीम है, जैसे कॉमनली हम कहते हैं कि फर्स्ट एड किट में किट के अंदर सिल्वर सल्फाडाइजिन ऑइंटमेंट होती है, सिल्वर एक्स के नाम से भी आती है, लोग आमतौर पर जानते हैं, वो लगा दिया जाए। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो उसको उस हालत में ही रख के और हमें डॉक्टर के पास तुरंत ले जाना है, मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत ले जाना है। इसी तरह से एक और दुर्घटना होती है घरों के अंदर कि करंट लग गया, कोई लाइव वायर था जिसकी वजह से करंट लग गया। करंट लगने की स्थिति में जो सबसे पहला काम है, जो सबसे एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है कि हम जल्दी से उस इंसान को पकड़ के अलग करना चाहते हैं, ये हम ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी करंट से चिपका हुआ है। हम अगर उसको छूने जाएंगे तो वो करंट हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि जिस वायर से और वो करंट आ रहा है, किसी लकड़ी के टुकड़े से या जो ऐसी कोई भी चीज़ प्लास्टिक हो जिसमें से करंट पास नहीं करता, उसकी मदद से पहले हम उस सोर्स को हटाएं जो उसको इलेक्ट्रिक्यूशन कर रहा है। अगर वो हम हटाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अब हम मरीज के पास जाके देख सकते हैं कि उसकी हृदय की गति तो नहीं रुक गई है या उसको वो बेहोश तो नहीं हो गए हैं, बाकी का इलाज उसके बाद शुरू होगा। ठीक है, तो इस तरह की कौन सी इमरजेंसी है इस पे निर्भर करेगा कि पहला एक्शन क्या लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बात सभी श्रोताओं से कहना चाहूँगा, कोई भी दुर्घटना आपके सामने घटती है, घबराइए मत, संयम से काम लीजिए और ध्यान रखिए कि मरीज की हम सबसे अच्छी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, उसको सुरक्षित स्थान पर ले आएँ, उसके आसपास भीड़ ना इकट्ठी होने दें और फिर उसको जो जिस प्रकार की दुर्घटना हुई है उसमें जो फर्स्ट एड दी जाती है, प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, वो हम शुरू करें और एम्बुलेंस बुलाने की व्यवस्था तुरंत करें
1: जी। डॉक्टर अरुण सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बिल्कुल जो है विस्तार से आपने बता दिया। अब जो है समर स्ट्रोक भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या इसमें भी यही प्राथमिक उपचार होगा या कुछ डिफरेंट होगा?
0: नहीं, मैं इसमें दो बातें बोलना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि समर स्ट्रोक यानी हीट वेव से जो स्ट्रोक होता है उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए। जैसे सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किए जाते हैं कि देखिए अभी गर्मी की लहर हो रही है, अभी हीट वेव है, अभी लू का प्रकोप चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम पहले सावधानी कहते हैं कि अगर ज़रूरी नहीं है तो आप बाहर ना जाएँ, गर्मी से अपने आप को बचाएं। दूसरी चीज़ है कि अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को निश्चित रखें, आप डिहाइड्रेट ना हो, बॉडी से पानी कम ना होने दें। इसलिए आपको अगर बाहर जाना भी है तो आप फ्रिक्वेंटली समय समय पर थोड़े थोड़े मात्रा में पानी पीते रहें। ठीक है, और तीसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए इन सब के बावजूद भी हीट स्ट्रोक होता है तो उसके लक्षण को पहचानिए। लक्षण हैं कि आपके जिसको हीट स्ट्रोक होगा उसके शरीर का तापमान बढ़ने लगेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 104 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर हो सकता है और उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो सबसे पहले उस इंसान को उस गर्मी की स्थिति से लाके एक छांव वाली जगह में, एक ठंडी जगह पे लिटाएं। अगर वो होश में हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, अगर वो होश में नहीं है तो सबसे पहले उनको पानी मत पिलाइए, क्योंकि जो बेहोश है उसको पानी पिलाने का अगर हम प्रयास करेंगे या कुछ खिलाने का प्रयास करेंगे तो सांस की नली में जा सकता है। इसलिए बेहोश इंसान को हम ये ना करें, लेकिन उसके आसपास हवा हो, ठंडक हो, छांव हो, ये व्यवस्था हम जरूर करें और उसके बाद एम्बुलेंस आते ही उनको हॉस्पिटल ले जाएं। ये समर स्ट्रोक में बहुत जरूरी। लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा मेरे श्रोताओं के लिए कि आप ये दुर्घटना ना होने दें, ये जागरूकता रखें, उनको पानी पिलाएं, उनको और खास करके

0: दो परिवार, दो उम्र के वर्ग में बच्चों को और बुजुर्गों को ऑलवेज इस बात के लिए मना करें कि वो गर्मी की स्थिति में और लू की स्थिति में बाहर जाने से बचें जितना प्रैक्टिकली संभव हो।
1: बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और जैसा कि अभी आपने जिक्र किया भी कि पानी पिलाना चाहिए नहीं। अभी हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, सुधीर सिंह कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार सर, जो रोड के किनारे एक्सीडेंट हो जाते हैं, इन लोगों को पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? जैसे कोई गिर गया है तो बेहोश हो जाता है, उसे पानी पिलाना चाहिए कि नहीं, जानना चाहते हैं ये।
2: तो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो ये है कि पानी पिलाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई उससे बेनिफिट नहीं होगी, लेकिन उससे क्या हार्म हो सकता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति बेहोशी के हालत में है, इवन आधे बेहोश हम कहते हैं कि थोड़ा सा उसका जो होश है उतना नहीं है, कम है, तो वैसी स्थिति में अगर देंगे और वो पानी जो है वो सांस की नली में चली गई, तो ये एक बहुत बड़ा उसके लिए लेनी की देनी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ऐसे मरीज, ऐसे लोग जिनके जिनको दुर्घटना हुआ हो, उसको ना कुछ पिलाएं, ना कुछ खिलाएं, और बेहतर हो कि उसको बिठा के ना रखें, लिटा के रखें। सो बहुत बार हमने देखा है कि कोई गिर गया हो प्रार्थना में, जैसे बच्चे गिर जाते हैं और उसको फिर हम बिठाते हैं ऑफिस में, कभी कोई गिर गया उसको बिठाते, बिठाना नहीं चाहिए, हमें उसको लिटा के रखना चाहिए। तो सेफ प्लेस पे, जहाँ पे आपको लगता है कि ये प्लेस अच्छा है, वहाँ पे लिटा के उसको रखिए और मदद के लिए आगे कॉल करिए नेक्स्ट स्टेप में।
1: तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, आगे भी ये सवाल जवाब जारी रहेंगे और समाधान भी जारी रहेंगे। फिलहाल यहाँ लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ अनुराधा और आज हम चर्चा कर रहे हैं इमरजेंसी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट पर और हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। आज के विषय में विस्तार से आप हैं डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और हमारे दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। तो आपसे बहुत कुछ आगे जानेंगे लेकिन फिलहाल एक सूचना आपको दे दें। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों और आकाशवाणी के बारे में अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अपने विचार भेजिए हमारे मेल ID healthairdelhi@gmail.com पर। तो इस सूचना के बाद अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सवाल जवाब जारी रहेंगे। आपको बता दें कि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, हम वापस आते हैं अपने विषय पर और जानते हैं आपसे बहुत सारी बातें अभी जानने को है। तो सबसे पहले मेरा अब सवाल है ब्रेक से वापस आने के बाद कि गोल्डन आर क्या होता है और गंभीर चिकित्सा में क्या है अलग अलग केसेस में। ये
2: ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि समय, इमरजेंसी में समय का सारा खेल है। अगर गोल्डन आवर की बात करूं तो ये चोटग्रस्त मरीजों में पहली बार इसको बहुत ज्यादा इलेबोरेट ढंग से बताया गया कि अगर चोट लगने से 1 घंटे के अंदर अगर उसकी डेफिनेटिव केयर या मैं कहते हैं कि मेन केयर, उसकी मेडिकल केयर स्टार्ट हो जाए तो बचने की या आउटकम्स के अच्छे होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ चोट तक या ट्रॉमा तक लिमिटेड नहीं है। अगर हार्ट अटैक के मरीजों को हम देखें तो हम लोग कहते हैं कि 30 मिनट के अंदर में, या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी अगर 120 मिनट या 2 घंटे के अंदर में हो जाए किसी की तो ये पहले जैसा ही काम करेगा, उसका शरीर, इनका स्वास्थ्य पहले जैसा वापस आ सकता है। सिमिलरली स्ट्रोक में जो लकवा मारना जिसको कहते हैं उसमें भी समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दमे के मरीज में किसी को दमा की इमरजेंसी आ गई, सांस उखड़ रहा है, उसमें भी है। किसी का हार्ट चलना बंद हो जाए उसमें तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि हर मिनट अगर छाती का दबाव या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट चलने बंद होने में अगर हम उसको मदद ना पहुँचाएँ तो हर मिनट बचने की संभावना 10% लगभग घट जाती है, यानी कि 10-12 मिनट होते होते उसका गेम ख़त्म हो जाएगा। सो इसलिए समय बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन सब इमरजेंसियों को हम लोग कहते हैं टाइम सेंसिटिव इमरजेंसी, कि समय से इलाज बहुत ज़रूरी है इसमें।
1: तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप समय से सतर्क हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और बचा लेते हैं किसी एक की भी जान तो बहुत बड़ी बात होती है। डॉक्टर साहब, अगर बात होती है तो हमारे पास देखिए एक सवाल भी आ चुका है SMS हमारे पास KD त्रिपाठी जी का रांची से आया हुआ है। लिख रहे हैं कि मैं 79 ईयर ओल्ड हूँ और एम्बुलेंस नंबर क्या 108 है, ये जानना चाहते हैं। हालांकि आपने अभी बताया है झारखंड रांची से ये सवाल आया है और मेरा भी एक सवाल है कि जब जैसे टीम वगैरह क्या भेजी जाती है आपकी ओर से, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स लोग जैसे कि अभी इनका सवाल है कंफ्यूज ये हो रहे हैं, पहले इनका जवाब दे दें फिर हम अपना सवाल करेंगे।
2: जरूर जरूर, देखिए

0: एम्बुलेंस सर्विसेज सरकार की तरफ से और प्राइवेट लोगों की तरफ से भी उपलब्ध है। और पिछले दशकों में हमने देखा और सरकार ने भी यह पाया कि अलग अलग एम्बुलेंस के नंबर के होने की वजह से लोग याद नहीं रख पाते हैं, तो सुविधा होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस कारण से ही केंद्रीय सरकार ने एक नंबर 112 नंबर जारी किया है और लगभग अब धीरे धीरे करके सारे स्टेट अब इस नंबर को एडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो ये एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो उस पर कनेक्ट कर देंगे, या कोई और आवश्यकता हो तो उस पर कनेक्ट कर देंगे।
1: जी
0: दूसरा एक और है कि कोई आपात स्थिति हो तो कहीं किसी किसी राज्यों में लोग 108 जो एम्बुलेंस सर्विस है उस पर कॉल करते हैं। तो थोड़ी मैं कहूँगा दोनों बात कि 112 उपलब्ध है, ज़रूर सुविधा उठाएं, अगर ना उपलब्ध हो आज ही जानकारी लें कि हमारे यहाँ एम्बुलेंस का नंबर कौन सा है।
1: जी बहुत अच्छी बात है। और अब हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमसे, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। आपका बहुत
2: हेलो,
1: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताएं अपना। जी अपना नाम बताएं सर।
2: नमस्ते मैडम जी, मैं मुजफ्फर मलेरकोटला पंजाब से बोल रहा हूँ।
1: जी स्वागत है। नाम बता दिया आपने, अब बताएं कि सवाल क्या है। दोनों विशेषज्ञ सुन रहे हैं आपको।
2: मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक बार रास्ता चल रहा था, ठीक है, अपने गाड़ी पे, तो
1: जी
2: कुछ मतलब एक बंदा ना एक्सीडेंट होकर के रोड पे गिरा हुआ था, ठीक है।
1: जी
2: तो वहां पे ना कोई उसको उठाने वाला नहीं था, ठीक
1: ठीक
2: है।
1: है।
2: तो मैंने देखा तो मैं सोचा नहीं, इसका मदद मुझे करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उसको ना उठा करके अपने गाड़ी में, एक बंदे को मैंने बोला भाई ऐसा करो, इसको ना मेरे गाड़ी में बैठाओ और मेरे साथ चलो,
1: जी
2: इसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है। जबकि उस टाइम एम्बुलेंस को फोन लगाया, एम्बुलेंस का फोन नहीं लग रहा था, ठीक है। तो मैं उसको हॉस्पिटल की कदर तो मैंने लेके गया, ठीक
1: जी
2: है, उस बेचारे को।
1: ठीक है।
2: और वहां जाने के बाद जो है ना हॉस्पिटल वाला बोलता है जो भाई इसका ना पुलिस केस बनेगा, ठीक है, जब तक पुलिस नहीं आएगा मैं इसको एडमिट नहीं करूंगा अपने हॉस्पिटल में।
1: ठीक है
2: तो
1: ठीक है।
2: मेरा कहने का मतलब, जैसे पुलिस आया तो मेरे से ना पूछताछ बहुत कुछ किया, ठीक है, और मेरे से जो है ना बहुत आना जाना कराया, जो कैसे हुआ, तुम कहाँ थे, कैसे। तो यार मैं उसका मदद किया तो मैं उसको ये थ्रू दिखा रहा जो मुझे
1: जी देखिए
2: कैसे
1: सर
2: हुआ।
1: ने, डॉक्टर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले इस विषय की चर्चा की थी। मुझे लगता है कि आप उस समय कार्यक्रम सुन रहे थे कि नहीं। सर एक बात इनको शॉर्ट में बता दीजिए कि
0: जरूर
1: क्या
0: जरूर,
1: रूल, क्या नियम अब बन चुके हैं।
0: नियम जिसको हम लोग गुड सैमरिटन लॉ कहते हैं। एक तो बड़ा अच्छा सवाल है और ये झिझक आज भी लोगों के बीच में है, तो आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने इस सवाल को दोबारा उठाया है। सो गुड सैमरिटन लॉ ये कहता है कि जो भी इस तरीके के दुर्घटना में शिकार व्यक्ति की मदद करता है उसे अस्पताल ना नाम पूछेगा, ना मरीज के इलाज के लिए कोई फीस या किसी और भी चीज़ की डिमांड कर सकता है। दूसरा, ये अस्पताल की जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पुलिस को बुलाना है तो बुलाए, मेडिको लीगल कार्यक्रम जो भी उसके लिए करना है वो करे, और किसी भी तरीके से जो ये व्यक्ति हैं जिन्होंने मदद, जैसे आपने बड़ा अच्छा मदद किया है, तो कोई हरासमेंट ना करे। सरकार की नियम यही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुँच सके।
1: जी डॉक्टर साहब अब बात कर लेते हैं कि ट्रॉमा केवल शारीरिक ही माना जाता है, ऐसा है क्या? मानसिक स्थिति में भी ट्रॉमा हो सकता है।
0: देखिए, ट्रॉमा तो दोनों तरीके से डिफाइन करते हैं। एक फिजिकल ट्रॉमा जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि शरीर में चोट किसी तरीके की लगी और कोई डैमेज हुआ उससे,
1: जी
0: लेकिन चोट लगने के बाद भी बहुत तरीके की मानसिक परेशानियां होती हैं। एक तो जिसको कि हम लोग कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि वो जो स्थिति थी ट्रॉमा की जिसमें एक्सीडेंट या कुछ हुआ था उसकी यादें आती रहती है
1: जी
0: और साइकोलॉजिकल बड़ा स्ट्रेस रहता है। तो इस पे भी बहुत गंभीरता से चर्चाएं चल रही हैं और बहुत सारे पहलू हैं जिस पे लोग ध्यान दे रहे हैं कि जब ये लोग आते हैं चोटग्रस्त तो उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए आने वाले समय में। इसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट या अदर डॉक्टर्स भी हैं और मैं चाहूँगा कि सर भी इस पे थोड़ा और प्रकाश डालें।
1: जी बिल्कुल
3: जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मानसिक आपातकालीन स्थिति भी होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत तनावग्रस्त है या डिप्रेशन में है और उसको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, यानी आत्महत्या की स्थिति पैदा हो रही है, वो करना चाह रहे हैं, ये अपने आप में एक इमरजेंसी है। अगर कोई भी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आता है और रिकॉग्नाइज करता है कि ये व्यक्ति अभी ऐसा कोई अनचाहा कदम ले सकता है, तो उसको रोकने के लिए प्रयास करना भी एक इमरजेंसी है, एक इंसान को ज़िंदगी में वापस लाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये तो मानसिक रूप से, दूसरा आपने भी देखा होगा।

0: पर कई बार अखबार में भी हम पढ़ते हैं कि कोई पुल के ऊपर गया और पुल पर चढ़ के खड़ा हो गया कि अब आत्महत्या करने के लिए कूदने के लिए तैयार है। ऐसे में राहगीर जो है जो उसको देखते हैं वो उसको बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये मानसिक इमरजेंसी भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि मान लीजिए आज रिजल्ट निकला है और किसी बच्चे का रिजल्ट बहुत ख़राब आया, तो हमें ये एक एंटिसिपेशन है कि जिस बच्चे का रिजल्ट ख़राब आया कहीं वो मानसिक रूप से तनावग्रस्त तो नहीं हो गया, उस चीज़ को रोकना, उसके लिए तैयार करना। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से परीक्षा से पहले बच्चों से कहते हैं, वही चीज़ हर आदमी को करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी तनाव की स्थिति है, किसी के घर में कोई दुर्घटना घट गई, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति की मौत हो गई, अचानक आकस्मिक मौत हो गई, उसका जो मानसिक प्रभाव घर के बाकी लोगों पर पड़ेगा उसको समझना और उन लोगों को उस मानसिक तनाव की स्थिति से निकालना आगे की दुर्घटनाओं से बचा सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है।
1: जी,
2: मैं एक जोड़ना चाहूँगा इसमें, जो बड़ा अच्छा सर ने बताया कि प्रधानमंत्री जी हमेशा बच्चों के साथ बातें करते हैं एग्ज़ाम के पहले, तो मेरा आपके माध्यम से सारे स्कूल और पंचायत से रिक्वेस्ट होगा कि क्यों ना हम अपने पंचायत के लेवल पे या स्कूल के लेवल पे परीक्षा के उपरांत एक ऐसे स्टूडेंट से मिले और उनको बताएं और इन स्थितियों को कैसे टालें, इस पे भी मुझे लगता है कि हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए दोनों लेवल पे, पंचायत और शिक्षकों के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे। तो ये मेरा एक सबमिशन है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आप लोगों का। और ये बात यहाँ पर देखने को आती है कि अगर बच्चा बचपन से ही स्ट्रांग होगा, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छा जीवन उसको मिलेगा। और उसके लिए जो आपने बताया है कि चर्चा होनी ही चाहिए और उस पर थोड़ा सा गंभीरता से लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत लाइटली लिया जाता है कि बच्चा स्कूल जा रहा है उसके साथ कैसा भी अगर बिहेव किया जाता है तो थोड़ा लाइटली लोग लेते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं आहत होता है। इसलिए उसको संभाल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा कहा जाता है कि एक कच्चा घड़ा होता है, उसको जैसा ढालेंगे वैसा वो बनेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आ चुका है रमेश कुमार सिंह जी का, न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि जब हम एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो फिर उन्होंने इसी समस्या का जिक्र किया है जिसका अभी हम जवाब दे चुके हैं। तो रमेश जी, उम्मीद है कि आपने सुन लिया होगा और आगे हम बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल अभी हमारे पास बाकी हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है कि ट्रॉमा सेंटर क्या है, ये सामान्य अस्पताल से क्या कुछ अलग होता है, किस तरह की सुविधाएँ होती हैं इसमें?
2: चूँकि आपने अभी बात करी कि गोल्डन आवर की बात है, तो सारी चीज़ समय से व्यवस्थित तौर पे होनी चाहिए एक मरीज के इलाज के लिए। तो जैसे हार्ट के सेंटर्स बनने शुरू हुए, तो इस आपात स्थिति में बहुत सारे स्पेशलाइज्ड केयर की ज़रूरत पड़ती है हर जान को बचाने के लिए। तो शुरुआती जो सेवाएँ होती है उसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी सेवा। उसके बाद जो किसी एक स्पेसिफिक तरीके की इंजुरी है, जैसे सर का चोट है, तो आपको फिर हेड इंजरी को मैनेज करने के लिए आगे की व्यवस्थाएं भी चाहिए। किसी को फ्रैक्चर है, स्पाइन की इंजरी है, तो उसको आगे की व्यवस्थाएं चाहिए। किसी को आईसीयू की ज़रूरत है, तो इमरजेंसी में इलाज होने के बाद आईसीयू में उसको केयर चाहिए। तो ये पूरी व्यवस्थाओं को एक जगह व्यवस्थित करने का जो काम किया गया है, इस तरीके के यूनिट्स या सेंटर्स बना के किया गया है। अभी हाल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट भी पास किया है इसके लिए कि जो सेकेंडरी लेवल के हमारे जिला अस्पताल हैं उसमें इमरजेंसी और ट्रॉमा की सुविधाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मेडिकल कॉलेज के लेवल पे, टर्शियरी लेवल पे तो ये चल रही थी, लेकिन अब इसको डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल पे भी कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए भी बड़ी सारी योजनाएं और कार्यबद्ध तरीके से कैसे इसको आगे ले जाएँ। तो ये एक तरीके से व्यवस्थित पूरा सेटअप है जिसमें कि कोई भी ट्रॉमा का मरीज आए, किसी भी तरीके के चोट का, उसका समुचित एंड समग्र इलाज हो पाए।
1: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं सर।
3: मैं मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी बताएं सर, क्या सवाल है आपका?
3: मेरा पूछना है कि जब,
1: हेलो, मुझे लगता है कि इनसे संपर्क टूट गया है और सवाल ये करने जा रहे थे, तभी मुझे लगता है कि नेटवर्क एरिया से ये बाहर चले गए क्योंकि आवाज़ आ रही थी पीछे सड़क की। डॉक्टर साहब, बात हम कर रहे थे कि किस तरीके की हमारे पास सुविधाएं होती हैं ट्रॉमा सेंटर में।
2: सो, जैसा मैंने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में एक, जैसे ही आप कोई मरीज आता है तो एक तो रिसेप्शन पे जो भी अराइवल एरिया या गेट के पास जो लोग हों

0: उनको इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि इस मरीज को जल्द से जल्द सुरक्षित तरीके से एम्बुलेंस से उतार के अंदर लेके जाएं।
1: जी
0: जब अंदर जैसे ही जाते हैं तो हमारी नर्सेस एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है, जिसको हम कहते हैं कि सीरियस कौन है और कौन कम सीरियस है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में ट्रायाज कहते हैं,
1: जी
0: कैटेगरी में बांटना, ताकि जो सीरियस है उसको जल्दी इलाज मिले और जो थोड़ा इंतज़ार कर सकता है वो
1: राइट जी
0: प्रायोरिटाइज कर ले हम। तो ट्रायजिंग हो गई, ट्रायज होने के बाद जान या लिम या मतलब हम कहते हैं कि हाथ पैर में अगर कोई ऐसा हो तो इसको बचाने के लिए जो चाहिए उसको सबसे जल्दी आपको देखना पड़ेगा। इसी को जो व्यवस्थित तौर पे हम कहते हैं ABCD वे में, एक डॉक्टर की भाषा में हम कहे तो करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिससिटेशन कहना करना, या जान बचाने की जो सारी प्रक्रियाएं होती है उसको करना। इसको करने के बाद हम जान पे खतरा तो टाल दिया हमने, अब हमें देखना है कि चोटग्रस्त कौन कौन सा भाग है, कौन सा अंग है, उसके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं।
1: जी
0: तो अब यहाँ पे जांचों का समय आता है, थोड़े जांचें हम करते हैं, फिर अन्य विभाग के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं साथ में कि इसका फ्रैक्चर है तो हमने इमरजेंसी में केयर, ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था, वो हमने रोक दिया है, फ्रैक्चर का एक्सरे हो गया है, फ्रैक्चर का मूवमेंट हमने रोक दिया है, ये सारे चीज़ हमने देख लिए, अब आप इसको आगे का इलाज करिए। तो कहेंगे ठीक है, इसको हम भर्ती करके ऑपरेशन करेंगे, या हो सकता है कि ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम देखभाल करके छुट्टी करेंगे। तो इस तरीके से पूरा व्यवस्थित तौर पे सारे सीक्वेंस में इसका इलाज चलता है ट्रॉमा
1: जी,
0: सेंटर में।
1: आगे भी आपसे अभी जानेंगे कि टेस्ट किस तरह के होते हैं और क्या क्या ज़रूरी होते हैं, करा ही लेने चाहिए, इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार मैडम,
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
2: और दोनों डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। रघुवीर सिंह
0: नमस्कार,
2: ठाकुर उत्तराखंड से।
1: जी जी सर,
2: मेरे को ये पूछना था कि जैसे नॉर्मल चक्कर आ जाते हैं कमजोरी से या किसी कारण से बच्चों को या किसी को भी घर में, तो उसमें जैसा सर ने बोला कि उसमें क्या उनको पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए?
1: क्या कहेंगे सर, बताएं। अरुण सर,
3: जी,
1: क्या कहना चाहेंगे?
3: इस प्रश्न को पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आम समस्या होती है, किसी भी इंसान को अगर चक्कर आ गए और वो बेहोश होने लगे तो उसे सबसे पहले लिटा दीजिए, एक साफ़ सुथरी जगह पे, खुली जगह पे, घर में, घर के अंदर भी लिटा दीजिए। और आम तौर पे ये चक्कर आना होता है तो हम लिटाने के बाद कहते हैं कि उनके पैर आप थोड़े से पकड़ के दोनों पैर ऊपर कर दीजिए। आमतौर पे क्या होता है कि लंबे समय तक खड़े रहने से या कमज़ोरी की वजह से और रक्त का जो प्रवाह है वो प्रवाह पैरों की तरफ हो जाता है, इससे मस्तिष्क में रक्त नहीं पहुंच पाता, इसलिए चक्कर खा के कोई गिर जाता है। तो सबसे पहला काम यही करें कि उसको लिटा दें, ये देखें कि उसकी सांस ठीक हो रही है, यानी उसकी गर्दन मुड़ी हुई नहीं है, गर्दन सीधी होनी चाहिए, और दोनों पैरों को हम थोड़ा सा धीरे से ऊपर उठा दें तो रक्त का प्रवाह अब जब फिर से हृदय और ब्रेन की तरफ होने लगेगा तो उनको होश आ जाएगा। अगर इसके बाद भी उस इंसान को होश नहीं आता है तब हमें ये सोचना चाहिए कि ये समस्या किसी और पीछे की किसी बीमारी की वजह से हुई है, तो उसमें ये आपातकालीन स्थिति बन सकती है। और अगर हम देखें कि उसकी सांस आ जा रही है, उसकी नब्ज चल रही है, तो अब सबसे पहले उसे हम निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाने की व्यवस्था करें। और अगर वो बेहोश हैं, उनको होश नहीं है, तो उनको पानी पिलाने का या कुछ भी खिलाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। अगर वो होश में हैं, बात कर सकते हैं, तो बैठा के आप उनको पानी पिला सकते हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि वो इस स्थिति में है या नहीं है, और तुरंत मेडिकल सुविधा लेने के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर या निकटतम डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, ये जरूरी होगा।
1: जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: जी नमस्कार,
1: नमस्कार सर,
4: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी अभी
4: मेरा
1: आपका
4: पूछना है,
1: हाँ जी बताएं।
4: जी मेरा पूछना है कि जब किसी इंसान पर एसिड अटैक हो तो हम लोगों को क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, कृपया विस्तार से बताएं।
0: ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है गौतम जी, कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर एसिड अटैक हो तो क्या करना चाहिए। तो एक तो ये है कि किसी भी तरीके का, जैसे एक लिक्विड हो गया या किसी भी तरीके का ऐसा हो, तो पहले तो उसका एक्सपोजर को या उसके असर को कैसे कम कर सकें, तो हम लोग कहते हैं कि और एसिड उस पर ना गिरे, पहले तो हम ये देखें कि एसिड कैसे कम हो सकता है। दूसरा बात है कि आप उसको जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाना पड़ेगा। इस बीच में आप इतना कर सकते हैं कि उसको, जैसे सर ने पहले बर्न के केसेस में, जैसे जो प्रिकॉशन हम जले हुए मरीज के लिए लेते हैं।

0: हैं, उस तरीके की प्रिकॉशन इसमें भी लेनी पड़ेगी आपको। और आप अननेसेसरी उसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्द से जल्द मेडिकल सुविधाओं को अवेल करें। और इसको आप वेट नहीं कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि चेहरे पे एसिड अटैक कॉमन होते हैं, जिसमें फिर सांस की नली में भी वो एसिड जाने की समस्या, सांस लेने की समस्या, ये सारी समस्याएं बहुत तेज़ी से अग्रसर होती है। तो इसको मेडिकल हेल्प जितनी जल्दी हो सके उस पर हम लेके जाएं।
1: जी, तो यहाँ पर आपने इनका मार्गदर्शन कर दिया। आगे बढ़ते हैं और फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और हम चर्चा कर रहे हैं आज किस तरह की इमरजेंसीज होती हैं और किस तरह से आपको सतर्कता बरतनी है। लगातार इस विषय पर हमारे दो विशेषज्ञ आपको सलाह दे रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। हम मैसेज यहाँ पर देखना चाहेंगे। हमारे पास ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता जी, बबीता रानी गुप्ता जी का मैसेज आया हुआ है। लिख रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, विषय भी बहुत अच्छा है। आज आपातकालीन पर बहुत जानकारी प्राप्त हुई है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जानकारी मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर गुप्ता जी और बबीता जी। अगर आप कोई सवाल लिखते तो और भी अच्छा लगता।

0: बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, आप दोनों से ही मेरा ये सवाल है और बारी बारी से मैं जानना चाहूँगी कि आप उपचार बताएं। और हीट प्रॉब्लम, हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये देखा जाता है कि लोग आमतौर पर मान लेते हैं कि ये गैस की समस्या है, लेकिन कैसे जाना जाए कि ये हार्ट की ही प्रॉब्लम है?
1: तो देखिए, अक्सर ये देखा जा रहा है कि 35 साल या उससे ऊपर, पहले तो और ज़्यादा इस उम्र में होता था, लेकिन आजकल थोड़े यंग एज में भी देखे जा रहे हैं कि सीने में बाईं तरफ दर्द, या कहें कि सेंट्रल चेस्ट में बीच में भी दर्द
0: जी।
1: और अक्सर ये बीच का दर्द होता है, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न कराता है हमें कि ये गैस है
0: जी।
1: तो पहले तो कोई भी ऐसा दर्द जो सीने में महसूस हो रहा हो, भारीपन लग रहा हो, घबराहट महसूस हो रही हो, जबड़े की तरफ जा रहा हो या बाईं हाथ की तरफ जा रहा हो, पसीने आ रहे हो और ये दर्द आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है और ये 20 मिनट से ऊपर खींचता चला जा रहा है, तो ये लक्षण हैं, आप मान के चले कि ये कुछ भी हो सकता है। तो घबराने के बजाय इसके बारे में सोचें कि इस पे आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं और इसको गैस समझ के इग्नोर ना करें पहली बार।
0: बिल्कुल।
1: तो अब आपको आगे जो भी पास में ऐसी सुविधा है जहाँ पे ECG हो सकता है और डॉक्टर की सुविधा मिल सकती है, वहाँ के लिए आपको आगे जाना चाहिए
0: जी। अरुण सर से मैं भी जानना चाहूँगी कि बचाव किस तरह से हो सकता है इस स्थिति में।
2: जी, डॉक्टर तेज प्रकाश ने बहुत अच्छी बात बताई कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि गैस है या हार्ट अटैक है, और ये हमें समझना होगा कि इसका पूर्वानुमान होना चाहिए। पूर्वानुमान कैसे होता है? अगर घर में एक हाइपरटेंशन के मरीज हैं या उनकी पूरी जांच हो चुकी है और पता है कि इनका जो हार्ट है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनके हार्ट अटैक होने की संभावना है, ऐसे इंसान में अगर इस तरह के लक्षण आते हैं, जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि सीने में सेंट्रल पार्ट में दर्द होता है या बाईं तरफ दर्द होता है, तो शुरू में हमें लगता है कि अच्छा, हो सकता है कि हमें घबराहट हो रही है, पेट पे कुछ ज़्यादा खा लिया होगा या कुछ गलत खा लिया होगा इसलिए होगा, इससे हम बचें। और ऐसे लोगों में, खास करके जिनको पहले से इस तरह की हार्ट की बीमारियां मौजूद हैं, उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो ये पूर्वानुमान रखना बहुत ज़रूरी है कि खास करके बुजुर्गों को, हाइपरटेंशन के मरीजों को और जिनको कार्डियक बीमारी पहले से है, उसमें अगर ये लक्षण आते हैं तो हम ये इग्नोर ना करें कि ये गैस की हो सकती है, तुरंत उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें या उनको हॉस्पिटल ले जाएं। बहुत अच्छी बात होगी कि हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगे कि वो कुछ नहीं था, गैस थी, लेकिन वो जो रिस्क थी कि अगर हार्ट अटैक होता तो हमने काश कोई सही फैसला ले दिया होता, हम उस गिल्ट से बच पाएंगे। मैं इसमें अनुराधा जी जोड़ना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जो इमरजेंसी बनते हैं, वो हमें अगर पहले से पता है, अगर हमारे घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज है, तो डायबिटीज़ के मरीज में देखिए दो चीज़ें होती हैं, अधिक शुगर होने की वजह से मेडिकल टर्म होता है कीटो एसिडोसिस, जिसमें भी इंसान बेहोश हो जाता है, या डायबिटीज़ के मरीज ने अपनी डायबिटीज़ की शुगर कम करने की दवाई खा ली लेकिन उसके बाद खाना नहीं खाया, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति होती। इन दोनों स्थिति में मरीज जो है धीरे धीरे बेहोशी की तरफ बढ़ता है और बेहोश हो जाता है। तो जब घर में एक डायबिटीज़ का मरीज है तो इस बात की सावधानी अगर हम रखें कि भाई वो ज़्यादा देर तक भूखा ना रहे और वो कभी गलती से भी बहुत ज़्यादा शुगर या शुगर वाली चीज़ें ना खा ले, दोनों ही स्थिति आपातकालीन स्थिति की तरफ ले जाएंगी। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, जिसे हम गाँव में देहात में अभी भी मिर्गी के दौरे के नाम से जानते हैं, उसमें भी ये स्थिति होती कि जिन लोगों को एपिलेप्सी की बीमारी है उनसे कहा जाता है कि आप लगातार अपनी दवाइयाँ खाएंगे, कोई भी दवाई मिस नहीं करेंगे, अगर किसी वजह से दवाई हो गई तो ये रिस्क रहती है कि उनको मिर्गी का दौरा हो सकता है, उनको एपिलेप्सी का अटैक हो सकता है। तो ये सावधानी रखना कि दवाई समय पर दी जा रही है, उचित मात्रा में दी जा रही है, दवाई कभी मिस नहीं हो रही है। और ऐसे व्यक्ति में अगर पहले के लक्षण आते हैं कि क्या होता है कि एक जी घबराने लगता है, उनको चक्कर से आते हैं, उसके बाद वो पूरा एपिलेप्सी का एक अटैक होता है, तो वो तुरंत समझते ही उनको लिटा देना, उनकी गर्दन सीधी करना और ये ध्यान रखना कि कहीं जो जीभ है वो उलट ना जाए, जो टंग है वो पीछे की तरफ ना चली जाए। तो उसमें आमतौर पर हम कहते हैं कि देखिए अगर वो बेहोश होने लगा है, उसको कन्वल्सन्स हो रहे हैं, तो किसी तरह से उसके जबड़े को खोल के उसके अंदर एक प्लास्टिक की चम्मच या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दें कि उनकी जीभ उलट ना जाए, ताकि उनको फर्दर किसी डैमेज से या दुर्घटना से बचाया जा सके। तो जिन घरों में ऐसे बीमार होते हैं वो डॉक्टर से ज़रूर ये सलाह लें कि डॉक्टर साहब इस बीमारी में कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, कौन सी आपातकालीन स्थिति घर में हो सकती है और उसमें हमें क्या करना चाहिए। ये मेरे ख्याल से मरीज के परिवार

0: अर्जनों को अपनी तरफ से और ये प्रश्न जरूर पूछना चाहिए ताकि वो उस चीज़ के लिए तैयार रह पाए। जो जो ऐसी बीमारियां होती हैं उनमें ये जो सावधानी है बहुत काम आएगी किसी दुर्घटना से बचने के, या उस मरीज के साथ कोई भी मतलब अनएक्सपेक्टेड घटना ना घट जाए उसमें ये बहुत योगदान रहेगा।
1: जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: एक जस्ट मैं ऐड करना चाह रहा था, जो मिर्गी के दौरों के बारे में बताए, बड़े होते हैं लोगों के बीच में होते हैं और अक्सर देखा गया है कि ये मिर्गी के दौरे के दौरान इनको गिरने से, या जैसे बिस्तर पे मिर्गी का दौरा पड़ा या बैठे बैठे पड़ा तो ये गिरने के बाद जो चोट की स्थिति होती है वो अवॉइड कर सकते हैं। तो मिर्गी के दौरे वाले में ये जरूर ख्याल रखें कि अगर ऐसी ऊंची जगह पे कहीं है वो और दौरा हो रहा है तो अब गिरने से चोट न लग जाए तो अच्छा है कि फ्लैट सरफेस पे वो रहें। दूसरा कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी काम को करने के लिए तो उसको अवॉइड करिए आप। जैसे बहुत बार लोग टंग को बाइट होने से बचाने के लिए स्टील के चम्मच या किसी चीज़ से करना चाहते हैं, तो आप इसमें ना पड़े, मैं तो यही सलाह दूंगा इसमें ना पड़े आप। ऐसा ना हो कि आप बचाव करने जा रहे हैं या कुछ हेल्प करने जा रहे हैं और ज़्यादा उसकी

0: चोट न लग जाए, तो वो अच्छा है कि फ्लैट सरफेस पे वो रहें। दूसरा कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है किसी काम को करने के लिए तो उसको अवॉइड करिए आप। जैसे बहुत बार लोग टंग को बाइट होने से बचाने के लिए स्टील के चम्मच या किसी चीज़ से करना चाहते हैं, तो आप इसमें ना पड़े, मैं तो यही सलाह दूंगा इसमें ना पड़े आप। ऐसा ना हो कि आप बचाव करने जा रहे हैं या कुछ हेल्प करने जा रहे हैं और ज़्यादा उसकी चोटग्रस्त होने की संभावना है। तो ये दो बातें मैं ऐड करना चाहिए।
1: बहुत ही यहाँ पर उत्तम चर्चा रही और मुझे लगता है कि समय का तो पता नहीं चला, बहुत सारे सवाल अभी मन में थे और हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी जानना चाह रहे होंगे और बहुत सारी बातें, लेकिन समय अब अनुमति नहीं दे रहा है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि श्रोताओं, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको आज का रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम, और आप हमें बताते रहिए। और हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज हमने चर्चा की है, आगे भी कार्यक्रम में लगातार चर्चा बनी रहेगी। आपको बता दें कि आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ मौजूद थे वो थे डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन UCMS एंड GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और डॉक्टर तेज प्रकाश सिन्हा, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुराधा को
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਠ ਕਲੇਅਰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM

0: हेलो
1: हेलो, मैं आकाशवाणी जलंधर तो प्रवीण बोल रहा जी, 107.8 का जी। मैं गाना सुनना है आर्या वा खून पसीने दी, कुछ और सा गाना सुनना सुनागा कि खून पसीने के मिले जो तो खाएंगे।
2: सुनो सुनो, अपने कानों में तेल डाल कर सुनो कि बंदा अपने प्यारों को आदाब बजा लाता है, अपनी अम्मा और अपनी जोरों के सर पे हाथ रख के अपनी कसम दोहराता है।
3: क्या
2: ये

0: भूल गए चोर बाजारी, अरे लूट गई दौलत सारी। सेठ भी अंदर माल भी अंदर दोनों ना बच पाएंगे, जैसे सेठ मरा है वैसे सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो के खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे नहीं।

0: हुआ जो मीसा जारी, अकड़ वो टूटी सारी, तो जालिम अंदर जोश भी अंदर होश ठिकाने आएंगे, जैसे मारा गया वो जालिम सारे मारे जाएंगे,
1: सारे मारे जाएंगे, सारे मारे जाएंगे।
0: अरे इसीलिए तो कहता हूँ प्यारो।
2: हेलो, मैं थोड़ा दोस्त आरजे अर्जन सिंह, ते हेलो जलंधर प्रोग्राम, थोड़ा सारे का स्वागत है, ते सुनदे इंद्रजीत निकू का ए ब्यूटीफुल जिहा सॉन्ग।

0: अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: नमस्कार, राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू,
2: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द

0: Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
2: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान हैं और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
0: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly four decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
2: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज़ की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज़्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज़्यादा पुस्तकें भी।
0: Dr. R. Ganesh is also a prolific author, having more than 70 books to his credit.
1: श्री भगत सिंह कोश्यारी, लोक कार्य।
2: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
0: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
2: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
0: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर फोर डेकेड्स एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: कुमार मल्होत्रा, मरणोपरांत, लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
2: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाव पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
0: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: रामास्वामी पल्लीस्वामी, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
2: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
0: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
0: श्री
1: पीयूष पांडे, मरणोपरांत, कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
2: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
0: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत, कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
2: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
0: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन्स सो ओवर 6 डेकेड्स।
1: श्री भरत सिंह भारती, कला लोक गायन।
2: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
0: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस।

0: 1987, where his album Purabiyathaan was released. He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
2: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki shisham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
0: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
2: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko, jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी. 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुईं.
0: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर साहित्य एवं शिक्षा.
2: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं.
0: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
1: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
2: Kumar Bose Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है. आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस सीखा लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे.
0: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award along with immense respect
1: Shri
0: within the artistic
1: Janardhan
0: community.
1: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
2: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं.
0: श्री बोथे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा राष्ट्रपति भवन मेजर कुंभ मेलास साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई. He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev 82 saal ke hain aap shraddhe hain Rajasthan ke Shri Ganga Nagar se aate hain aur aapne rashtra ke kai anchalon mein aadhyatmik margdarshan bhi diya hai aur samaj ki seva bhi ki hai.
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: Kesariya rang ka aapne safa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue is sant Padma Shri se sammanit hota hua.
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय.
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बूम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है.
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली स्कूप एंड खाकी.
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा.
2: वन उत्पादक हैं आप 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है वन दादी नाम से जानी जाती.

0: 3000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अलपुआ से आती हैं।
1: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा।
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
2: डॉक्टर सामाजिक
0: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Srimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है। उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ। आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
2: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर, जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021, विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security needs.
2: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy Award.
2: Shri Ghafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं। इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: When through his sustained artistic practice, Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
2: Meer Hazi Qasim, Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द USA, UK, साउथ अफ्रीका, कनाडा, UAE, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
2: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास

0: तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है।
1: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
2: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
0: Rabbari, is 23-year-old khiladi ki T44 unchi kood mein vishwa mein aap number 1 hain और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
1: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रैंड प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर्स सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
2: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा।
0: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई, श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, ही स्ट्रेंथन्ड पब्लिक सेफ्टी
2: स्ट्रेटजीज। देवा लाड, दादा लाड, कृषि।
0: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं।
1: श्रीरंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन विच वॉज यूज बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
2: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
0: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
1: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
2: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
0: 69 वर्षीय Dr. Mandal, International Cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
1: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
2: Professor Budh

0: रश्मि मणि पुरातत्व विज्ञान,
1: भारतीय पुरातत्व विज्ञान के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि, राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं, और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir, and discovered 200 archaeological sites, and he directed 20 excavations.
0: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
1: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
0: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
1: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University, and Russia's Academy of Sciences.
0: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
1: Kantha, ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज ऑल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगाश्री अवार्ड।
0: हरि माधव मुखोपाध्याय, कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
1: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु मुखोपाध्याय।
0: श्री सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
1: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
2: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
0: Shri K. Pajanivel, Khel, Silambam.
1: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है, इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
0: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
1: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसपास आकर श्री पंड्या का सम्मान।
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
0: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
1: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s. As secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti, he revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
1: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aate

0: हुए और पंत जी जो कि 90 साल के हैं उनका सम्मान करती हुई। और ये करतल ध्वनि इस बात का प्रतीक कि राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋणी है।
1: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
2: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार
0: उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बालकृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खासतौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
2: Srimati Deepika Reddy, Kala Nritya.
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की 3 पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: श्री हरिचरण शाइकिया, कला सत्रिया नृत्य।
0: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
1: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य
0: एवं शिक्षा विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है। प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include

0: his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
2: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hai aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka pramaan ki unka kitna bada contribution raha hai.
0: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
1: Shri Yumnam Jatra Singh Marnopranth Kala Nat Sankirtan, unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
2: Aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे सम्मानित होते हुए युवनाम जात्रा सिंह मरणोपरांत
0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: Ashok ji ne भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का
0: Dr. Singh has guided 34 PhD and 5 MSc students, making substantial contributions to human resource development and mentoring numerous young professionals.
1: श्रीमती शिव शंकरी साहित्य एवं शिक्षा
2: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में खास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है 30 से ज्यादा उपन्यास 40 से ज्यादा लघु उपन्यास 100 से ज्यादा लघु कथाएं 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने
0: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था विज्ञान सीरियल
0: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन Manav Ka Vikas, broadcast in 18 Indian languages simultaneously through 200 radio stations. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
2: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalaya ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manak professor hain. संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है
0: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM
1: एंड डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृहमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई
0: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandal.

0: vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: Shri N. Swaminathan, Kala Bhakti Sangeet.
2: Tanjavur se aate hain aur Tamil Sangeet ke kshetr ke pratishthit kalakar hain. और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
0: He became a master of the art and served as authuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Keval Krishna Thakral, चिकित्सा आयुर्वेद।
2: डॉक्टर ठकराल आयुर्वेदिक पद्धति के शल्य चिकित्सक हैं और भारत में क्षार सूत्र चिकित्सा के माध्यम से कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
1: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
2: ज़्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी।
0: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
1: श्री अरविंद वैद्य, कला थिएटर।
2: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज़्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
0: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
1: Professor
0: very adaptable.
1: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
2: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hain. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar photovoltaics ke kshetron mein bahut karya kiya hai.
0: Professor Vasi, throughout his career in both semiconductors and solar photovoltaics, he stressed the importance of interdisciplinary, collaborative and inclusive research, which he thought was necessary, especially on major national missions. He has published about 200 papers in leading journals and conferences.
1: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
2: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
0: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
1: Professor 2019. Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
2: Gambir Singh ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री, शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
0: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge, huge success.
1: Shri Halley Var, Samaj Seva.
2: Abbari, Halley Var ji ki aap paryavaranvid aur khasi logon ke swadeshi.

0: विज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
1: श्री वॉर हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स। सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री टू क्रिएट ड्यूरेबल लिविंग स्ट्रक्चर्स। His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: Please, may I have attention, please? I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूले तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति
4: एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ थे ए आकाशवाणी जलंधर का एफ एम रेनबो चैनल है हुणे तुसीं राष्ट्रपति भवन नवी दिल्ली विखे नागरिक अलंकरण समारोह का अखी डिठा हाल साढ़े दिल्ली केंद्र राही सुन रहे सी इस समारोह की प्रधानगी भारत के मानयोग राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कर रहे सन

0: FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर का ये रेनबो चैनल है। रेनबो की कड़ी के मुताबक इस वेले शाम के 6 बज रहे हैं। हुण तो कुछ ही पलों च तुसी सुनोगे प्रोग्राम लव यू जिंदगी।
1: जब रूठ जाती है तो
2: गाओ वालो बसंती को समझाओ।

मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन आखिर हुंदी की है मोटिवेशन। मोटिवेशन दोस्तों इतों समझ लो कि विआह शादी का कोई प्रोग्राम होवे ना तो वो सानू पता साडे अपने घर का फंक्शन आ पर उत्थे भी असीं आप नहीं नचदे उत्थे भी सानू मोटिवेशन की जरूरत हुंदी है कि वो जिहड़ा स्टेज के उत्ते खड़ा होया एंकर है वो कहिंदा लो जी मां मैनू नज़र आ गया जी मामे का मुंडा क्या खूबसूरत ड्रैस पाई है जी 500 दा नोट इहने मेरे उत्ते वार के हुण ही नचना शुरू कर देना। मतलब उत्थे भी सानू मोटिवेशन की जरूरत है। गाना भी इदां दा सी तू नच मुंडे की मासी लगती है भूआ लगती है चाची लगती है ताई लगती है। मतलब जिनी देर तक सानू कोई आवाज़ नहीं मारता ना उन्नी देर तक असीं कोई काम नहीं करते। पर दोस्तों जिन्हें काम करना होंगे जिन्हें दुनिया से कुछ हासिल करना होंगे ना वो किसी की मोटिवेशन की उसनों जरूरत नहीं होंगी वो अपने आप दे विच एक मोटिवेशन होंगे। एक यह जी कहानी है दोस्तों करोली टकाकस की। करोली टकाकस हंगरी की आर्मी के सब तो वधिया पिस्टल शूटर होंगे जी। सारों यकीन होंगे कि वह ओलंपिक अगर खेडेगा ना तो वह गोल्ड जरूर जितेगा। पर एक अजिहा हादसा हो जाता जिस विच उसका सज्जा हथ वह हथ जिस दे नाल वह गोली चलाउंदा वह हथ खत्म हो जाता है। तो वह हस्पताल दे विच रोण की बजाय यह फैसला करता है कि वह हुण अपने खब्बे हाथ दे नाल शूटिंग की प्रैक्टिस करेगा। सालों की मेहनत तो बाद जदों वह ओलंपिक विच जांदा है तो वह गोल्ड मैडल जरूर जितता है। दोस्तों करोली ने तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिता जो उसने गवा दिता सी। उसने सिर्फ उस चीज़ पर ध्यान दिता जो उसके कोल बाकी सी। जे जिंदगी कुछ खत्म हो गया तो उदास ना होवो। देखो कि तुहाडे कोल अजे होर भी काबिलियत है। जस्से लव यू जिंदगी। डक्का तोड़दे रहा करो। मेरे वर्गे भी कई ढीठ लोग हुंदे ने जिहड़े कि ना कोई काम करके राजी ने ना कोई डक्का दूरा करके राजी ने।

0: आकाशवाणी स्टाफ कलोनी बीएमसी चौक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज वन जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चावान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े बीएमसी चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख हुण 20 मई तो वधा के 30 मई 2026 कर दिती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। हुणे तुसीं सुन रहे हो जी प्रोग्राम लव यू जिंदगी। रेनबो दी कड़ी दे मुताबक इस वेले शाम दे 6

0: सुनोगे शाम 7:03 पे। नमस्कार।
1: अजकल भारत के हर पिंड दियां छत्तां बदल गईयां हन। जिथे कदे छत्तां ते सिर्फ पापड़ अते कपड़े सुकाए जांदे सन, उत्थे हुण बिजली बिल जीरो हो रहे हन। हर पिंड विच लोग सोलर पैनल लगा रहे हन, तुसी भी लगा लो। 78,000 दी सबसिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख तो वध परिवार तां इसदा लाभ लै चुके हन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नाल जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

वेलकम बैक जी, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है, चल रहा है थोड़ा फेवरेट प्रोग्राम लव यू जिंदगी। दोस्तों, कई बार असी नेकी करते हाँ पर चाहते हाँ कि सारी दुनिया नू पता लगे, पर निकोलस विंटन की कहानी अलग है। दूजे विश्व युद्ध दौरान उन्होंने 669 बच्चों की जान बचाई सी। उन्होंने 50 साल तक यह गल किसी नू नहीं दसी, इतों तक कि अपनी पत्नी नू भी नहीं। 50 साल बाद जदों उन्हां दी पत्नी नू कुछ पुराने दस्तावेज मिले तां दुनिया नू फिर जाके पता लग गया। फिर एक टीवी शो दौरान जदों वो बैठे सन तां सारी ऑडियंस खड़ी हो गई। उस ऑडियंस दौरान जो उत्थे मौजूद वो लोग सन, वो सारे उही बच्चे सन जिन्हां दी निकोलस ने जान बचाई सी जो हुण वड्डे हो चुके सन। नेकी अजिही चीज़ है जो कदे छुपदी नहीं। जे अज तुसी किसी दी चुप चुपी ते मदद कीती है ता यकीन रखो कुदरत उसका फल जरूर देवेगी। मनुखता तो वड्डा कोई धर्म नहीं हुंदा। देखो जी, नेकी करना भी किसी का पसंदीदा काम हो सकता है, तो अपने पसंदीदा काम नू करते रहो। और मैनू लगता है कि जिस निकोलस जी की गल मैं हुण तुहाडे सारे नाल सांझी कर रहा, इन्हां दी स्टोरी नू तुसी सोशल मीडिया दे उपर जरूर देखा होएगा और तुसी खुद देखोगे कि उन्हां दी अखां दे विचों जो हंझू आ रहे ने उन्हां सारे बच्चों नू उत्थे मौजूद देख के, वह अपने आप दे विच ही दस रहे हैं कि उन्होंने उन्होंने बच्चों के लिए की कुछ कर छड़िया। सो जेकर नहीं भी है तो तुसी गूगल पर सर्च कर सकते हो जी, ऑनलाइन इंटरनेट पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हो निकोलस विंटन। निकोलस विंटन लिख के जब तुसी सर्च करोगे तो तुहानू उन्हां दी वो इंटरव्यू वाली एक वीडियो जरूर मिल जाएगी। खैर, अगे वधदे हां जी, लव यू जिंदगी प्रोग्राम दे विच एक म्यूजिकल ब्रेक, मिस पूजा की आवाज़ च पसंद ट्रैक, उम्मीद है तुहानू पसंद आएगा।

दोस्तों, महात्मा बुद्ध एक विचार है अंग्रेजी च लिखिया, ज़्यादातर सानू मिलता है कि वट यू थिंक यू बिकम। जो असी सोचते हाँ असी ओह जे हो जाने, साढ़े आस पास के हालात ओह जे बनने शुरू हो जाते हैं, साढ़े आस पास दीज़ा ओह जी बननिया शुरू हो जाए ने। कीड़ी देखी असी सारे ने, चीटी कह दें, एंट कह दें ना, वो जी कीड़ी होंगी अपने भार तो 10-20 गुणा वध भार चुक लेंदी है। किमें चुक लेंदी है? शायद वह भी यही सोचती है, वट यू थिंक यू बिकम। दोस्तों, काफ़ी बार असी देखा कि अपने भार तो वध भार चुक के अपने घर तक ले जाना, मजबूरियां हो सकदिया ने, जरूरत हो सकदिया ने उस दियां, ते असी भी तो उम्मीद दे ही हाँ। जदों सानू किसी चीज़ की जरूरत होंदी है, जब सिर ते आण पैंदी है, तो फिर असी उस काम नू बहुत काली काली दे विच जल्दबाजी दे विच करदे हैं, फिर कहने शुक्र है हो गया। पर जेकर उस ही काम नू असी थोड़ा जिहा ईमानदारी वरत के समय के मुताबिक कर लिए, तो फिर देखांगे कि वह काम होने के नाल सानू एक तो सैटिस्फैक्शन दिंदा है कि असी काम नू समय से कंप्लीट किया, दूसरा सानू इस चीज़ का एहसास भी हुंदा है कि असी जो किया वह बिल्कुल सही किया, उहदे विच कोई भी जल्दबाजी या काली नहीं सी। मेरे बहुत सारे दोस्त ने जिहड़े चाहुंदे ने कि अपनी बॉडी नू फिट रखण, मोटापे नू घट किया जाए, तो दोस्तों के लिए हुंदा कि कल सवेरे उठ के ना वॉक करांगे, दो चार दिन बच्चों निकल जाते हैं, मोटीवेशन की कमी है। तो दोस्तों, तुसी भी एक वॉलपेपर लगा सकते हो अपने मोबाइल फोन के उपर, जिहड़ा हाल ही के दिनों में मैं अपने एक चहेते नूं दस्सिया कि फोन की स्क्रीन के उपर एक वॉलपेपर लगाओ, या कोई एक इदां दी चीज़ जो तुहानूं उठते बैठते देखते रूम के विच आस पास तुहानूं एक चीज़ जो तुहानूं प्रेरित कर सके वह हमेशा तुहाडे सामने होवे, तां तुसी फोन ते वॉलपेपर लगा सकते हो कोई भी मोटीवेशनल। अगर मैनूं पुछो मैं किहड़ा तुहानूं रिकमेंड करदा, तां तुसी जो अज आपां विचार सांझा कीता, वट यू थिंक वी बिकम, जो असी सोचते हाँ असी उहो जिहे बन जाने हाँ। सो इस नूं अपना वॉलपेपर लगा लो, उस तो बाद जिहो जिहा सोचोगे वह जिहियां चीज़ां तुहाडे आस पास होनिया शुरू हो जाणगियां। बस तुहानूं पता है फिर चंगा सोचना है चंगा होएगा, माड़ा सोचांगे तो माड़ा होएगा। सो जो सोचांगे उदां दा ही असी बणांगे, जो बीजांगे उही वड्डांगे। सो ये वॉलपेपर तुसी स्क्रीन ते लगा लो, क्योंकि 24 घंटे मैनूं लगदा होर किसी चीज़ नूं देखण नालों असी मोबाइल फोन नूं वध देखदे हां। कदे वी उहदा लॉक खोलो तो लॉक स्क्रीन ते नॉर्मल वॉलपेपर दोवें स्क्रीन दे उपर यही तुहाडा जिहड़ी इमेज है वह लगी होनी चाहिए है। तुसी ऑनलाइन सर्च करोगे तो तुहानूं बहुत खूबसूरत जिहड़े वॉलपेपर ने वह इस ही टैग दे मिल जाणगे। सो उच्चिया उच्चिया गल्लां कर दित्तियां ने जी, कहिंदे पानी चो नंगना होवे जां ते रुक जाईदा है जां फिर पौंचे नूं चक लईदा, पर कुछ लोग कहिंदे भाजी हाई हील्स पाए होण ना तां इंसान आप ही नंग जांदा है।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है कहां को जाएगी, पागल लड़की मुझे मरवाएगी।

0: मैं तो शॉर्ट फॉर्म च कहूँगा जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी। जी बिल्कुल, उन्होंने जिहड़ी जर्नी है बहुत ही कठिन यानी कि मुश्किल भरी रही है। शुरुआत इन्होंने 1963 दे विच पारसमणी तो की सी, जिहदे विच कई वधिया वधिया गाने, हस्ता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे, रंग सुनहरा, वो जब याद आए, बहुत याद आए, और मतलब काफ़ी सारे सुपरहिट से। पर इस तो पहला उन्होंने जिहड़ी मेहनत की है, आओ उस दे बारे थोड़ा जिहा चानण पाने। एल पी यानी कि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी ने म्यूजिक इंडस्ट्री विच अपनी पहचान बनाने लिए बहुत संघर्ष किया। दोवें बहुत गरीब परिवार नाल संबंधित सन, पर संगीत लिए उन्हों का जज्बा बहुत ही वड्डा सी। लक्ष्मीकांत जी बचपन तो ही मैंडोलीन वजाते ने, वह छोटी उम्र विच ही फिल्म स्टूडियो विच जा के संगीतकारों मिलते अते काम सीखते। कहा जाता है कि लता जी ने उन्होंने प्रतिभा देख के उन्होंने सुरेश बाल कला केंद्र नाल जोड़िया, जिथे उन्होंने संगीत सीखन का मौका मिलया। प्यारे लाल जी के पिता जी पंडित राम प्रसाद शर्मा जी एक मशहूर ट्रंपेट वादक सी। प्यारे लाल जी ने सिर्फ 8 साल की उम्र में ही वायलन सीखना शुरू कर दिता और हर रोज़ 8 to 12 घंटे रियाज करते रहे। घर की माली हालत खराब होने करके वो छोटी उम्र में ही स्टूडियो विच वायलन बजा के पैसे कमाउन लग पे। दोवां दी दोस्ती जिहड़ी है संगीत अकैडमी विच होई, वो इकट्ठे स्टूडियो दे चक्कर लगाउंदे, वड्डे संगीतकारां नूं मिलदे अते छोटे छोटे काम करदे। उन्होंने कई मशहूर संगीतकारां दे सहायक अते आर्केस्ट्रा म्यूजिशियन वजों भी काम कीता। इंडस्ट्री दे विच जगह बनाना जिहड़ा आ उह आसान नहीं सी उस समय, क्योंकि उस समय शंकर जयकिशन जी, नौशाद और एस डी परमन जी वर्गे वड्डे संगीतकार पहला ही मौजूद सी और पहला ही मशहूर भी सी। फिर भी एल पी जी ने अपने मेहनत, नवी धुना अते वड्डे आर्केस्ट्रा दे संगीत नाल अपनी वक्री पछाण बनाई। 1970 दा दहाका जिहड़ा उह बादशाही दा दौर। 1970 दे दहाके विच एल पी ने संगीत यानी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी, एल पी मैं शॉर्ट फॉर्म च कह रहा, उन्होंने संगीत की दुनिया में ऐसा राज किया कि हर वड्डा निर्देशक उन्होंने काम करना चाहता सी। उन्होंने क्लासिकल, कवाली, लोक धुन अते वैस्टर्न म्यूजिक का शानदार मिलाप किया। राज कपूर नाल काम भी उस दौर दे विच होया। उन्होंने दे नाल काम करना किसी भी संगीतकार लई वड्डी उपलब्धि मनी जाती सी। उस दौरान उन्होंने कई फिल्मां कीतियां जिवें बॉबी, सत्यम शिवम सुंदरम, अमर अकबर एंथनी, कर्ज लाहौर भी कई फिल्मां आ। तो दोस्तों इन्होंने ये मशहूर फिल्मां कीतियां और इन्हां दे कई मशहूर गाने ने, आओ एक एक करके जिहड़े आ प्यारे प्यारे जी गाने जिहड़े आ थोड़े थोड़े सुन लैने हैं। आओ इन्हां दे ट्रैक्स जिहड़े आ प्यारे प्यारे जी थोड़े थोड़े करके सुनते हैं। जाना कितने नहीं सुनते रहना एफ एम रेमो जलंधर, दिल तो दिल तक।
1: सावन का महीना पवन करे सोरू,

0: खान जी, शाहरुख खान जी, उवें ही इन्हां दी इक छवि बनी हुई है। इन्हां ने कई मशहूर इन्हां दे डायलॉग्स ने, आओ नंबर 5 तो लैके नंबर 1 तक एक एक करके सुनते हैं। पहला डायलॉग जिहड़ा आ मशहूर डायलॉग, वह फिल्म है जी गीता मेरा नाम तो। आओ आओ सुनते हैं पहला डायलॉग।
1: फिर गद्दारी करते वक्त लोग ये क्यों भूल जाते हैं राजा, के जानी के पास वो बेरहम दिल भी है जो जीते जागते इंसान को एक बेजान मोम का पुतला बना देता है।
0: है कि नहीं दमदार जरा कह लो कि डायलॉग है ना। से सारे डायलॉग होने सुना था या एक एक करके? एक एक करके सुनावा तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा है ना। सो दोस्तों डायलॉग भी सुनाने हैं, इन्हां दे बारे गल्लां बातां भी करनियां आ, ते नाल नाल तुहानूं ट्रैक भी सुनाने आ। ते इन्हां दी इक फिल्म सी, यानी कि इन्हां ने कई फिल्मां कीतियां, चाहे रोमांटिक होण, चाहे देशभगती वालियां होण, चाहे वह कोई भी होवे, पंजाबी फिल्मों विच भी इन्हां ने काम किया, वह भी आपां इन्हां दे बारे गल करांगे। सो एक देशभगत दे नाते इन्हां ने एक फिल्म दे विच भी काम किया सी, हम हिंदुस्तानी, उहदा ही एक बहुत ही प्यारा जिहा गीत असीं सुणदे आ। पर एक छोटी जी ब्रेक तो बाद जाना कि नहीं है, सुनते रहना FM रेनबो जलंधर, दिल तो दिल तक।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: हमेशा से यही होता है ठाकुर साहब, बेटे को लगाम की जरूरत होती है, लेकिन दौलतमंद बाप उसके हाथ में सोने की चाबुक थमा देता है।
1: कमाल का डायलॉग जानी दुश्मन मूवी दे विच्चों हुणे असीं सुणिया, जिहड़ा बहुत ही प्यारा। और इस तो बाद एक होर डायलॉग है नंबर 3 ते, जिहड़ा कि 36 घंटे मूवी जिहड़ी 1974 दे विच आई सी, आओ सुणदे आ ओह वी डायलॉग।
0: जिनकी जिंदगी मौत की छांव में गुजरी हो वो मौत से कहां डरते हैं एडिटर।
1: मैं कहना दोबारा सुन लीए नहीं जी, आओ एक होर डायलॉग सुनते हैं इन्हों का, एक होर प्यारा जहा जड़ा डायलॉग, बहुत ही मशहूर डायलॉग, रेशमा और शेरा मूवी का 1971 दे विच जड़ी आई सी।
0: की मौत जिस घड़ी लिखी भी होती है विजय, उसी घड़ी आती है।
1: देखो डायलॉग दे विच भी इन्होंने एक इंपोर्टेंट गल कह दिती। सो दोस्तों एक अगला डायलॉग जिहड़ा है वह भी कुछ अजिहा ही है, बहुत ही मशहूर रहा और थोड़े जे शायराना अंदाज़ दे विच नंबर 1 दे उत्ते वह है, जिहड़ा कि फेमस डायलॉगों दे विचों जिहड़ी लिस्ट दे विचों नंबर 1 है जी, मुकाबला फिल्म दा 1979 दे विच। आओ सुनते हैं जी वह प्यारा जिहा एक डायलॉग।
0: हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
1: जी मैं कहना जी ये वाला डायलॉग असी दोबारा जे सुन लीए तां तुहानू कोई एतराज़ तां नहीं है, मैं कहना मेरा खुद मन कर रहा सुनन दा जी।
0: को झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं।
1: वाह जी वाह, क्या बात है जी, इन्हां दा डायलॉग जिहड़ा बहुत मशहूर होया सी और तकरीबन जिहड़े उस समय दे उस दौर दे, वैसे उस दौर दे नहीं, काफ़ी जिहड़े लोग सीगे ओह बोलदे रहिंदे सी इस डायलॉग नूं। सो दोस्तों इन्हां दे इसे ही एक्टिंग और इसे ही जड़े अंदाज करके इन्हां नूं कई अवार्ड्स भी मिले ने, जिवें कि 1964 दे विच मुझे जीनो दो फिल्म लई बेस्ट एक्टर अवार्ड, 1966 दे विच बेस्ट एक्टर अवार्ड खानदान फिल्म दे लई, 1968 दे विच बेस्ट एक्टर नॉमीनेशन मिलन फिल्म दे लई, और 1996 दे विच फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हां नूं मिलिया। फिर एक जड़ा कि सब तो सन्मानित जिहड़ा अवार्ड है पद्म श्री 1968 दे विच इन्हां नूं ओह मिलिया। स्क्रीन अवार्ड भी मिले 1997 दे विच स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 दे विच जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2000 दे विच आई फल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और भी बहुत कुछ इन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच हासिल कीता है। कई मशहूर फिल्मां कीतियां ने, 1960 दे दहाके दे विच मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, खानदान, मेरा साया, अमरपाली, 1970 दे विच हीरा, नागिन, जानी दुश्मन, 1980 तो 1990 दे विच रोकी, वतन के रखवाले, परंपरा, और जिहड़ी मशहूर फिल्म होई है ना, सब तो मशहूर फिल्म है वह इन्हां दे रही है मदर इंडिया, जिस वजह नाल इन्हां दे करियर ने मोड़ ले लिया। होर इस दे बारे होर भी गल करते हैं इन्हां दे बारे, इन्होंने पंजाबी फिल्म दे विच भी काम किया है, जिवें कि मन जीते जग जीते एक फिल्म सी उस दे विच भी काम किया इन्होंने, पंजाबी सिनेमा नूं उच्चा चुकन अते इस नूं धार्मिक अते सभ्याचारक कदमां मतलब कदरां कीमतां नाल जोड़न लई बॉलीवुड दे महान अदाकार सुनील दत्त जी दा बहुत वड्डा योगदान है। हालांकि वह मुख्य तौर पर हिंदी फिल्मों का हिस्से रहे, पर उन्होंने 1970 दे दहाके विच पंजाबी सभ्याचार नूं प्रफुल्लता करन लई बहुत सारियां महत्वपूर्ण

आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और शाम दे 8 बज चुके ने जी, 8 बज के 4 मिनट स्टूडियो दी घड़ी दे विच हो गए ने और मिक्स जिया प्रोग्राम लैके तुहाडे कोल हाजिर हो गए हैं जी। मेरा नाम है जी कुलदीप, तुसी जानदे हो जी, और तुहाडा मनोरंजन करन दे लई मैं हाजिर हाँ जी। जी दोस्तों, शुरुआत यदि असी एक मज़ेदार तरीके दे नाल करते हैं जी, तुसी जड़ा पिछे म्यूजिक सुन रहे हो ध्यान ना सुनो, सुन लिया जी, जब दोबारा सुनावा इदा करदा जी, मैं शुरुआत तो दोबारा सुनाना जी तुहानू।

हाँ जी दोस्तों, मैं वेट कर रहा सी, मैं देख रहा सी कोई मैसेज कोई कर रहा या नहीं कर रहा। एक मैसेज टाइप तो हो रहा, मैं वेट कर रहा, टाइप करो करो करो करो, मैसेज आया। एक मैसेज आया तो है मिर्ची मिर्च मसाला नहीं मसाला मिक्स प्रोग्राम। आर जी सर जी नमस्कार जी, डिनर के साथ साथ आपका प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। सर जी तुसी डिनर बना रहे हैं यानी कि मसाले तुसी पहले ही पाले उहदे च, यानी साडा प्रोग्राम सुन तो बिना ही तुसी मिर्च मसाले पाले। चलो कोई गल नहीं, खैर डिनर तुसी स्वाद जिहा बना के तुसी खा लिया होना है, तो हुण मस्ती भरिया प्रोग्राम जिहड़ा सुन रहे हो तुसी, नाल नाल हस भी रहे हो। मैसेज किया जी किरण नरुला जी ने ग्रीन पार्क कपूरथला तो, और कह रहे ने कि फोन ये बोलेगा, फोन की बोलेगा, लिख रहे ने जी, इन्होंने लिखा है जी कि फोन बोलेगा बस कर मैनू माफ कर। तुसी ये तो लिखता कि बस कर मैनू माफ कर, लेकिन मतलब क्यों माफ कर, कि ये केड़े अत्याचार तुसी फोन दे उत्ते कर दे हो, थोड़ा जिहा जरा जिक्र जरा फरमाइए, थोड़ा जिहा भी दसीए ना। इदां नहीं पता लगना, इहदा मतलब तुसी फोन दे दुआले ही हर वेले रहिंदे हो। दोस्तों फोन एक जरूरी जिहड़ा अंग साडा बन चुकिया जी, जिदवें सानू हाथ पैर अखां कन्न नक जिहड़े जरूरी ने ना, उवें ही हुण फोन जिहड़ा है ना इन्ना जरूरी अंग साडे लई बन गया होया है कि असी इन्ना किन्नू वरतदे हां कि सानू एंड दे विच, मतलब सानू नहीं फोन एंड दे विच कहिंदा है कि बस कर भरावा बस कर, सानू बख्श दे। बिल्कुल जी, फोन जिहड़ा आ बहुत ज़्यादा असी वरत रहे हैं, पर फोन जिहड़ा आ चलो इहदे फायदे तो बहुत सारे ने, पर इहदे इस दे नाल नाल काफ़ी सारे नुकसान भी ने। जिवें कि असी बच्चों नूं जिहड़े बच्चे छोटे बच्चे होंदे ना, वह रोंदे होंदे ने, रोंदे रोंदे ही उन्हां दे अगे मोहरे फोन कर देंदे, आ चक जी वीडियो देख तू, वो वीडियो देख देते बच्चा तो हसन लग पैंदा, लेकिन उसनूं उहदी आदत लग जाती है, और ये आदत जिहड़ी है ना अगे जा के बहुत वड्डा नुकसान करती है। और इस तों इलावा जिहड़े फोन ने स्पैमर्स या स्कैमर्स जिहड़े हुंदे ने, उहनां दे लई इह फायदेमंद ने, क्योंकि वह अपना लिंक एक भेज दिंदे ने, लिंक दे विच जिहड़ा आ उह कई सारी चीज़ां हुंदियां ने जिहड़ा कि तुहाडे फोन दे थ्रू उह इनफॉर्मेशन कढ सकदे ने, तुहाडे जिवें कि गूगल पे हो गया या कोई होर ऐप तुसी यूज़ करते हो जिहदे विच पैसे ट्रांसफर हुंदे ने, वह वाली इनफॉर्मेशन होगी, या उस तों इलावा कोई भी इनफॉर्मेशन जिहड़ी जरूरी है वह उसनूं ट्रांसफर करदे ने, ते उसका गलत यूज़ वह कर सकदे ने। तो दोस्तों मतलब फोन चलाना तो वधिया गल है, पर

जी दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा पै रही है जी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्मी है, यानी 40+ टेम्परेचर हो जाता है। थोड़ा ये राहत जी है वो सानू शायद शनिवार को थोड़ी जी मिली सी, पर अज भी थोड़ा मौसम उपर थले सीगा। लेकिन कुछ दिनों तो मतलब आने वाले दिनों के लू चलन का ऐलान भी जरा कर दिता गया है। और सो अपने बच्चों सेफ रखो, ठंडी जगह पर रखो, छां रखो, उन्होंने धुप के निकलन ना दो। जो जाते भी हैं तो एक छतरी जरूर दो, उन्होंने पानी की बोटल नाल दो। तो नाल दी नाल ही अपने शरीर को ठंडा रखने वास्ते कई चीज़ा ने जिहड़ी तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो। कई तरह के नैचुरल शरबत हैगे ने, लेकिन तुसीं घरे भी एक वधिया जिहा शरबत बना सकते हो। मैं पहले भी करी दस्सिया सी, हुण भी दस दिंदा है। तांगे वाली मिश्री लैनी है, सौंफ लैनी है, थोड़ी जी काली मिर्च लैनी है, और इसनू ग्राइंड कर देना है मिक्सी दे विच, और इसका एक पाउडर फॉर्म च बना लेना। इसनू पानी दे विच पाना, थोड़ी जी जे तुसी

दोस्त अर्ज किया है, कहना जी मैं मझ वेची, मैं गां वेची, मैं मझ वेची ते मैं गां वेची। दोबारा दस दिना जी, मैं मझ वेची ते मैं गां वेची, तुसी की करना? वो मेरी सी, मैं तां वेची। दोस्तो इदां ही हसदे रहो हमेशा और मुस्कुराते रहो। उम्मीद करता तुहानूं यह प्रोग्राम बड़ा वधिया लग्या होएगा और हसदे हुए तुसीं इस प्रोग्राम नूं, मतलब मैनूं तुहाडे तों इजाजत लैनी पैणी है और इजाजत लैण दा मन नहीं करता तुहाडे नाल गल्लां करन दा, बहुत बहुत बहुत बहुत मन करता और इहो जिहे गीतां नूं सुणन दा भी मन करता, लेकिन किते ना किते समें जिहड़ा आ सानूं इजाजत नहीं दिंदा। सो इस प्रोग्राम नूं इस आखिरी गीत दे नाल इत्थे ही समाप्त करन दी मैनूं दिओ इजाजत। फिर करांगे इंजॉय सोमवार को, जो भी आर जे आएंगे वो थोड़े नाल इदां ही इंजॉय करेंगे। आओ सुनते इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और समा हो चुका है जी तुहाडे फेवरेट वाले प्रोग्राम जिस ना जी दिल चाहता है। दिल बहुत कुछ चाहता है और मैं देख सकता है जी किन्ने सारे मैसेजेस साढ़े को आ चुके ने जी, लिस्ट बहुत लंबी है जी। शुरुआत करते हैं पर उस तो पहला तुहानू दस दिंदे हां जी जिहड़े भी लिसनर्स ने साडा जिहड़ा हुणे हुणे प्रोग्राम यानी FM ट्यून इन किया 102.7 के उत्ते, तो उन्होंने दस दें कि यह प्रोग्राम तुहाडी फरमाइशी यानी कि फरमाइशा पूरा करता है और उस दे लई करना की है जी, अपना मोबाइल चुको उस दे विच एक नंबर डायल करो 9855101027 9855101027 और इस नूं सेव कर लो और इस दे उत्ते मैसेज करना है सानू 10 बजे तक यह प्रोग्राम चलेगा। तुसीं अपनी फरमाइश सानू भेजनी है हिंदी ते पंजाबी फिल्मी प्रोग्राम जिहड़ी पुरानी फिल्मां दी और तुहाडा दोस्त कुलदीप तुहाडी फरमाइश नूं पूरा करन दी पूरी पूरी कोशिश करेगा। सो दोस्तो आओ सुनदे हां इस प्रोग्राम दा पहला गीत और तुसीं अपनी फरमाइश भेजी जाओ और तुहाडा दोस्त वेट कर रहा है तुहाडी सारी फरमाइशां दी। आओ सुनदे हां इस प्रोग्राम दा एक प्यारा जिहा पहला ट्रैक।

हाँ जी दोस्तों, मैसेजेस से मैसेजेस बहुत सारे आ रहे ने जी। और मैसेज अगला जड़ा आ चुका है जी, वो सुनते हैं जी। कह रहे ने, दिल चाहता है शो एनी सॉन्ग टू रीड आउट माई नेम प्लीज आरजे जी। ये लिखे है जी हितेंद्र दास जी ने असम तो बहुत दूरों मैसेज लिखा है जी। और तुहाडा तहे दिल तो शुक्रिया जी, तुसी इन्नी दूरों सानू मैसेज भेज रहे और ये प्रोग्राम इन्ने शिद्दत नाल सुन रहे हो। इस तो बाद एक और फिल्म का गीत ये सुनना चाह रहे ने। कौन सुनना चाह रहे ने? गांव हड़ीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा तो राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा जी, धन्यवाद।

जी दोस्तों, एक मैसेज आया जी साढ़े को, प्रोग्राम दिल चाहता है प्रसारक को प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार जी, मूवी और लिख रहे ने कि एनी सॉन्ग में भी शामिल कर सकते हैं जी। लिखिया जी इन्होंने गांव नथाना पंजाब, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और लिख रहे ने खुश रहो आबाद रहो जी, और सेम टू यू सर जी, तुसी बहुत प्यारा लिखिया जी साढ़े लिए। और इस तो अलावा एक होर साढ़े को मैसेज आया जी साढ़े को, कह रहे ने जी नमस्कार जी, आपकी बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने प्यारे प्यारे शब्द मेरे लिए लिखने के लिए। मेरे लिए नहीं, सारी टीम जो है हमारी जो है वो आपके लिए ही बैठी हुई है, और आपका मनोरंजन करने के लिए हम हमेशा हाजिर हैं।

ने हाय तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, एक गाना सुनना चाह रहे ने और कह रहे ने कि साड़ी भी फरमाइश पूरी करो जी। जलंधर तो लिख रहे ने, लिख रहे कौन लिख रहे ने, अमनदीप जी ने मैसेज किया सानू और एंड दे विच लिख रहे ने मेकिंग योर डे कंप्लीट फ्रॉम द स्टूडियो टू द स्ट्रीट इट्स आरजे कुलदीप ऑन द बीट। वाह जी वाह, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इन्ने प्यारे प्यारे शब्द जड़े आ साडे लिए लिखन दे लिए और FM रेनबो जलंधर सुनने के लिए और तुम्हारी फरमाइश असी जी सिस्टम के उत्ते रेडी कर चुके हैं जी। और तुसी भी बाकी भी जड़े श्रोता हुणे हुणे जिन्होंने 102.7 नू ट्यून इन किया है वो अपनी फरमाइश पूरी करवा सकते हैं, करना कुछ नहीं है जी। 9855101027 9855101027 9855101027 इस दे उत्ते मैसेज करना है सानू पुराने हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दे और थोड़ा दोस्त कुलदीप थोड़ी फरमाइश पूरी जरूर करेगा।

ये दोस्तों बहुत ही प्यारा या ट्रैक जिहड़ा असीं सुनिया और मैसेज भी प्यारे प्यारे साडे कोल आ रहे ने। अगला मैसेज आया साडे कोल आदरणीय प्रसारक जी नमस्कार। जी नमस्कार आदरणीय प्रसारक जी, आप हमारी फरमाइश किसी भी गीत के साथ शामिल कीजिए। जी ज़रूर, आपका तहे दिल से शुक्रिया। जी आपका भी शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और लिखा किन्होंने जी, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहाँ, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार तो इन्होंने मैसेज किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। एक होर मैसेज आया जी, सुप्रेम नमस्कार, प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का प्यार कभी कम नहीं करना फिल्म गीत सुनना चाह रहे।

और मैसेज कीता जी छत्तीसगढ़ तो, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी ने, और इन्हां दी फरमाइश असीं पूरी करन जा रहे हैं। और तुसीं भी फरमाइश पूरी करवा सकते हो, करना कुछ नहीं जी, तुसीं बस नंबर नोट करना है 9855 10 10 27 9855 10 0 10 27। इस नंबर के उत्ते तुसीं अपनी फरमाइश हिंदी ते पंजाबी पुराने फिल्मी गीतां दी सानू भेजनी है, और तुहाडा दोस्त तुहाडी फरमाइश नूं पूरी करन दी पूरी पूरी कोशिश जरूर करेगा जी। आओ सुनदे हां इन्हां दी फरमाइश कीता होया गीत।

हिरण्य सप्रेम नमस्ते कोई भी गीत में शामिल कीजिए जी। लिख रहे ने रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी हनुमानगढ़ फजिलका तो यह लिख रहे ने जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। इस तो अलावा एक होर मैसेज आया साढ़े को वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जी, इन्होंने मैसेज किया जी, कह रहे हैं कोई भी गीत सानू सुना दिओ जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करन दे लई। एक होर साढ़े को मैसेज आया जी, मैसेज आया सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सन्नी मन्नी काका, बिट्टू लाडी, मोहन मास्टर जनक नगर जलंधर तो मैसेज कर रहे हैं। फिल्म धर्मात्मा गीत तेरे चेहरे में वो जादू है जी, ये सुनना चाह रहे हैं जी। और आओ इन्हां दी फरमाइश पूरी करते हैं, पर नाल ही तुसीं भी अपनी फरमाइश पूरी करवा सकते हो। करना कुछ नहीं है जी, बस 9855101027985510 1027। ये साढ़ा वट्सएप नंबर है, इस दे उत्ते तुसीं फरमाइश भेजनी है पुराने हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दी, और थोड़ा दोस्त थोड़ी फरमाइश नूं पूरी करन दी पूरी पूरी कोशिश करेगा जी।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: FM 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और तुसी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो जी दिल चाहता है अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। ये अगला मैसेज आ गया जी, कह रहे ने जी पहले अच्छा दो मैसेज किए ने, हम आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बनो एलिजा नायब और लड्डू। दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नायाब और लड्डू जी इन्होंने मैसेज किया जी हमें इग्नोर ना करो फिल्म दा कह रहे सीगे और पहला इन्होंने कहा जी कोई भी गीत दे विच शामिल कर लिया जाए। सो दोस्तों इदा हुंदा है कि जदों तुसी एक मैसेज करता असी वेट करते हैं हर एक नूं वन बाय वन जिहड़ा स्टैप बाय स्टैप आपां चलते हैं उन्हां दा, पर जदों तुसी एक होर मैसेज कर देंदे हो यानी कि पहले तुसी 9 बजे करते हो फिर तुसी 9:30 बजे करते हो फिर तुसी टॉप लिस्ट ते चल जांदे हो, उत्थे तक पहुँचने लई सानूं टाइम लगता। सो जिद जिद मैसेज तुसी एक बार मैसेज कर दो चाहे मैं आ या चाहे कोई भी आ साढ़े लिए तुसी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो, तो असी हमेशा कोशिश करांगे कि तुहाडे जिन्ने भी मैसेज असी इस प्रोग्राम दे विच शामिल कर सकीए जरूर करांगे जी, और तुहाडे करके तां असी हैं। सो असी तुहाडी फरमाइश ना पूरा करांगे तो कौन करेगा दोस्तों। सो दोस्तों ये मैसेज तो असी इस प्रोग्राम दे विच शामिल कर ही लिया जी। एक होर मैसेज असी शामिल कर लैंदे आ, दिल चाहते गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी और कह रहे हैं जी कोई भी गीत। और एक और मैसेज आया साढ़े को आदरणीय आरजी जी आदाब नमस्कार, कह रहे हैं कोई भी गीत धनोरी तैलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया आयान बाबू और आपका फल खुशियों से भरा रहे। आपका भी सर। एक और मैसेज आया प्रेम पूर्वक आदाब जी गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम सद्दाम अदीब हसन जी ने और कह रहे हैं एनी सॉन्ग अपनी पसंद में कोई भी जी। बहुत वधिया वधिया गीत जिहड़े हैं साढ़े श्रोता सुन रहे हैं जी, फरमाइश कर रहे हैं जी। और एक और मैसेज आया आदरणीय प्रसारक महोदय जी प्यार भरा नमस्कार, कोहिनूर फिल्म का गीत दिल में बजी प्यार की शहनाई और कह रहे हैं कि ये सुना दिता जाए। और मैसेज किया जी PS ननवाकर निर्मला ननवाकर विशाल ननवाकर मलकापुर तो नारायण इंगले सुपान ताइड़े आशीष मुरहेकर जी ने किया जी और धन्यवाद किया एंड शुक्रिया जी बहुत बहुत मैसेज करन दे लिए और तुहाडी जिहड़ी फरमाइश आ असी रेडी कर चुके हैं जी। दिल में बजी प्यार की शहनाई कोहिनूर फिल्म दा आओ सुनते हैं जी, इन्हां दी फरमाइश किया हुआ। और जिहड़े लिसनर्स हरे भी प्रोग्राम सुन रहे हैं वह भी फरमाइश कर सकते, करना कुछ नहीं जी 98 55 10 10 27 9855 1010 27 के उत्ते सानू पुराने हिंदी ते पंजाबी फिल्मी गीतां दी फरमाइश भेजनी है जी।

हाँ जी दोस्तों जी, फरमाइशां दा सिलसिला जारी है जी, जारी है जी। और फरमाइशां आई जा रही ने जी, आई जा रही ने। और एक मैसेज आया है साढ़े कोल, कह रहे ने सप्रेम नमस्ते कबूल करें जी, फिल्म उपकार बोल मन्ना डे कसमे वादे प्यार वफा। मैसेज कीते चक 15 PS जिला श्री गंगा नगर राजस्थान तो जी, सरबजीत कौर जोसन, सरबजीत कौर जोसन गुरमन मेलबर्न आस्ट्रेलिया तो, अर्शदीप अर्शपाल सिंह जोसन ते वैंकूवर कनेडा तो, रोबिन सिंह जोसन ते साथी दोस्त मित्र राजस्थान वाले जी, उन्होंने मैसेज किया जी और कह रहे हैं शामिल करें जी। एक और मैं फिर लास्ट लिख रहे ने, रात 9 बजे वाले तो शामिल करो जी, बाकी बाद दी गल है जी। दोस्तों मैं एक बार फिर यही तुहानू रिक्वेस्ट करना चाहवागा कि तुसी जदों भी सानू एक बार मैसेज कर देंदे हो तो तुसी बस तुसी अपनी बारी का इंतजार करना है, बस असी एक एक करके सारयां दे मैसेज इस प्रोग्राम दे विच शामिल करन दी कोशिश करते हैं, असी नहीं चाहते कि कोई भी नाराज हो। सो दोस्तों बस वेट करते हैं तुहाडे मैसेजिज़ की, लेकिन जो तुसी मैसेज एक बार फिर दोबारा कर दें, जिदा कि हुण इन्होंने ही एक 9 बजे मैसेज किया, उस तो बाद इन्हों को जब मैं पहुँचने लगा फिर इन्होंने एक 9:30 बजे मैसेज करता, तो यानी कि यह फिर दोबारा उपरली लिस्ट पर आ गए। सो यो इदा मैसेज आता सानू भी बुरा लगता है कि इन्हों चंगा नहीं लग रहा, इन्हों की फरमाइश पूरी नहीं हो रही। दोस्तों इदा कुछ नहीं है, समा साढ़े को एक घंटे का होंगे, उस दे विच फरमाइशा करनी है सच्ची बहुत मुश्किल है, पर असी तो मेरे नाल जिन्हें भी इतने आरजिज़ है हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्होंने श्रोता जोड़े उन्हों की फरमाइशा हमेशा पूरिया होंदिया रहन, तो इन्हों की फरमाइश असी पूरी करा। उस तो पहले एक मैसेज होर पढ़ लें कि एनी सोंग लिख रहे हैं, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक कैथल हरियाणा से मधु नायक जी ने मैसेज किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और इस तो अलावा एक होर मैसेज आया साढ़े को, नवीन ओबराय जी ने यमुनानगर तो सानू हरियाणा तो मैसेज किया है जी सानू। और इस तो अलावा एक होर मैसेज आया साढ़े को, जॉन डिकैस्ट्रो रोजी डिकैस्ट्रो पर्ल डिकैस्ट्रो विलिस डिकैस्ट्रो जी, और ये लिख रहे हैं कि कुलदीप भाई जी थैंक्स फॉर नाइस प्रोग्राम विद लवली सोंग्स। और इस तो अलावा एक होर आया जी, बरेली से कोई भी गाने में हमारा नाम शामिल कर लो जी, गुड्डू अब्दुल हसन छोटे भाई शानू भाई। और बाकी तुसी भी अपनी फरमाइश पूरी करवा सकते हो 9855101027 देते हिंदी ते पंजाबी पुराने फिल्मी गीतों की। आओ इन्हां दी जिहड़ी फरमाइश आ वो पूरे करते हैं, मिलते हैं इस गीत तो बाद, जाना कितनी है सुन रहना FM रेनबो जलंधर, दिल तो दिल।

एफ एम बैंड 102.7 MHz से है आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल। स्टूडियो की घड़ी के 10 बज चुके हैं तो प्रोग्राम शामे गज़ल नू शुरू करन दा समा हो चुकया है जी। और तुसी जुड़ चुके अपने दोस्त कुलदीप दे नाल शामे गज़ल, गज़लों का सिलसिला और एहसास हर एक चीज़ का, चाहे वह तकरार का हो, चाहे प्यार का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, उसनू बयां कर दिया है गज़लां जड़ियां कि तुहानू सुनावांगे। और नाल ही

कुछ लफ्ज़ तो जुबा से ही चिपक जाते हैं जो हम चाह कर भी नहीं बोल पाते हैं। कुछ लफ्ज़ सच ही तो है सब कुछ कहाँ कह पाते हैं। कुछ लफ्ज़

बहुत ही प्यारी जी गजल, और उदा ने एक प्यारी जी कविता हो रहा है। त्रिशला पाठक जी दिया कलम चो कुछ लिखी हुई है लाइना तोड़े रेडियो सेट के उत्ते पेश करने जा रहे हैं। वो अश्क अश्क बह रहे मैं उधर से उतर रही, वो आते जाते उधर से जिधर से मैं गुजर रही, वो नब्ज नब्ज संभाल रहे मैं संभल संभल के चल रही, वो मने मकां बना रहे मैं मनसूबे कुचल रही, हया नहीं हवा में जो और चल रहे, ज़रूरतों के मारे वो दर बदल टहल रहे, वो निशा निशा निरख रहे मैं दीवा दीवा निखर रहे, वो शाम शाम ढल रहे मैं सुबह सुबह निकल रही, वो अश्क अश्क बह रहे मैं उधर से उतर रही।

कुछ यूं चला सिलसिला इस जिंदगी का, कुछ यूं चला सिलसिला इस जिंदगी का, भटक रहे शहरों की अनजान राहों में। ख्वाहिश थी आसमां से जा टकराने की, ख्वाहिश थी आसमां से जा टकराने की, अपनों के साथ खिलखिलाने की, सारी फिक्र को हंस के उड़ाने की।

प्रीति जी दी एक बहुत ही प्यारी जी कविता। प्यारी प्यारी आंखों में सपना तुम्हारा हो, ना दुख प्यारा हो ना दर्द प्यारा हो, याद आए तो आ जाओ सामने कभी ऐसा भी सुंदर नजारा हो। आंखों में आंखें डालकर बैठ जाएं हम, किसी बहती नदिया का किनारा हो। दिल से दिल को ही रही बात प्यार की, दिल से दिल की हो रही बात प्यार की, भीगता ये दन बदन सारा हो। चल पड़े फिर कच्चे रास्तों पर हम, बस कांधे का तेरे मुझको सहारा हो। शिकन आने ना पाए कभी चेहरे पर, मुस्कुराता हुआ प्यारा हमारा हो। वो वक्त ठहर जाए घड़ी भर के लिए, जब साथ हमारा हो अद्भुत नज़ारा हो। दोस्तों प्यारी जी कविता और यहो जी प्यारी जी गज़ल थोड़ी रेडियो सेट के उत्ते।

एफएम बैंड 102.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल और 10:03 हो चुके ने, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। एक प्यार का नगमा है, प्यारे प्यारे जी, नगमे वाला यह प्रोग्राम जिस विच प्यार नू दर्शाया जाता, मतलब सुनाया जाता है प्यारे प्यारे जी गीतां दे नाल, रोमांटिक होन, तकरार परे होन, ते नाल दी नाल ही कुछ प्यारी जिया शायरियाँ भी थोड़े नाल साझी करते हैं। बसती है जो हवा फिदा हो जाती है फिजा, बसती है जो हवा फिदा हो जाती है फिजा, खुशबू फूलों की लेकर जब ये इटलाती है, दूर कहीं बादलों में खो जाने को दिल करे, दूर कहीं बादलों में खो जाने को दिल करे, जब सर्द हवा गालों को छूकर निकल जाती है।

अपनों में ढूंढते हैं अपनों को, अपनों में ढूंढते हैं अपनों को, हुआ कैसा देखो जमाना है। कहने को हजारों अपने, वक्त पर किसी का ना ठिकाना है। हालात कुछ यूं हुए हैं आजकल इस बेमुरव्वत दुनिया के, दिल में हो कितना भी दर्द मुश्किल अपनों को बताना है। वक्त की बहती धारा के साथ बहते जाना है हमको भी, क्योंकि बेमतलब शिकायत करके बात को ही बढ़ाना है। उलझा सा नजर आता है आजकल हर कोई खुद में ही, अपनी मुश्किलों का बोझ खुद ही अपने कंधों पर उठाना है। हमारे ख्वाब अजीज हो हमारे अपनों को, जरूरी तो नहीं अपने ख्वाबों के लिए नहीं हमें किसी को आजमाना है। अपनी अपनों की तरफ हसरत भरी निगाह से देखो, अपनों में अपनों को ढूंढना सिर्फ अपना दिल दुखाना है।

एक कदम तुम बढ़ाओ, एक कदम मैं, देखते देखते कदमों को दूरियां मिट जाएंगी। कुछ तुम गुनगुनाओ, कुछ मैं गुनगुनाओ, सुनते सुनते गुनगुनाहट को खामोशियां मिट जाएंगी। नजरों से कुछ तुम कहो, कुछ मैं कहूँ, कहते कहते नाराजगी मिट जाएगी। चलो बैठे कहीं कोलाहल से दूर, कि चलो बैठे कहीं कोलाहल से दूर, जिंदगी यूं ही साथ कट जाएगी। कभी तुम मुस्कुराओ, कभी मैं, यूं मुस्कुराहट से नज़दीकियां पास आ जाएंगी।

क्यों जलसा नीर बहाती अखियां, क्यों बूंद बूंद टपकाती अखियां, क्यों दुख के आलम में फंस जाती अखियां, दर्द को क्यों ना सह पाती अखियां, किस बात की दे दी सजा इनको, किस बात की सजा दे दी इनको, चुप रहकर बहना सिखा दिया, कुछ ना बोलकर भी सब कुछ कहना सिखा दिया।

जब से हुआ है दीदार तुम्हारा ऐ सनम, जब से हुआ है दीदार तुम्हारा ऐ सनम, खो गए हैं हम बस ख्यालों में तुम्हारे सनम। ना सुबह का पता चलता है ना शाम का, ना सुबह का पता चलता है ना शाम का, बस करती हैं रातें अब यादों में तुम्हारे सनम।

एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर का रेनबो चैनल तुसी प्रोग्राम इंजॉय कर रहे सी। एक प्यार का नगमा है अपने दोस्त कुलदीप दे नाल। उम्मीद करदा थानू प्यारे प्यारे जनगमे में बहुत ही प्यारे लगे होंगे और तुसी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। सो इस प्रोग्राम नू इत्थे ही समाप्त करन दा समां जिहड़ा वो हो चुका है। सो मैनू दिओ इजाज़त, फिर किसी दिन मिलांगे थोड़े नाल और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।